मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। सुबह के 5:57 हो रहे हैं। शुरू करते हैं आज की पहली सभा के प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए हिंदी में समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में

0: देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

उस इंसान की हार कैसे हो सकती है जिसके गुरु स्वयं ईश्वर हो और जिसके जीवन रथ के सारथी भी ईश्वर ही हो। वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वृंदा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, शुरुआत करते हैं हवेली संगीत के साथ।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। हे ईश्वर, तेरे भरोसे थे, तेरे भरोसे हैं और तेरे भरोसे ही रहेंगे।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी है और इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए आपके दोस्त वृंदा को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब हम आपको जानकारी दे दें आज रिले और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण में आकाशवाणी दिल्ली से 10:55 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जनता को संदेश। इस संदेश के बाद आप सुन पाएंगे इसी संदेश का संस्कृत अनुवाद। रात 10 बजे का समय रहेगा रविवासरीय संगीत सभा का। हमारे आकाशवाणी उदयपुर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कुछ इस तरह से हैं। अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:40 पर आप सुन पाएंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा खेती में आज 6:50 पर। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा मई माह के कृषि कार्य। फिल्मी नगमों से हम आपका मनोरंजन करेंगे। सुबह 7 बजे आप सुनिएगा सदाबहार नगमे। फिल्मी गीत होंगे दोपहर 12:30 पर, 1:45 पर।

शाम 6:05 पर, रात 8 बजे और रात 9:30 पर। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे सुबह 7:45 पर, 9:30 पर और रात 9:15 पर।

नमस्कार। उदयपुर का अंक लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 8:30 पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे वीकली रिकैप, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में मेवाड़ में शास्त्रीय गायन का इतिहास, जानकारी व मनोरंजन के सेगमेंट में आप सुनिएगा टीवी विज्ञापनों की यादें। इसके अलावा बातचीत होगी तंबाकू निषेध दिवस पर जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रणव भावसार से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत। हमारे नन्हे मुन्ने सुनेंगे बगिया के फूल कार्यक्रम दोपहर 12:00। कृषि जगत प्रोग्राम होगा दोपहर 2:30 पर। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी रोजाना की तरह 5:00। बहनों के लिए कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1:05 पर। इस कार्यक्रम में जरा सोचिए का विषय रहेगा पारिवारिक निर्णयों में सामूहिक भागीदारी। इसके अलावा होगी बातचीत परिवार पर नशे का नकारात्मक प्रभाव विषय पर। चर्चा आप सुनेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में और कामकाज की बातें होंगी। ग्रामीण परिवार सुनेंगे कार्यक्रम खेती और घर 7:00। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज रिले और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण में हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे श्रोता सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

खेती में आज कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाई बहना ने नीता कोठारी रो राम राम सा। किसान भैया आज बात करांगा मई महीना में खेती बाड़ी रा कसा कसा काम करना है। मई रे महीना में देखो सिंचित क्षेत्र में जायत्री फसला उगाई जावे, टेम पे बोई तकी फसला जिसरे की मूंग उड़द लोबिया मूंगफली सूरजमुखी गन्नो कपास धान री नर्सरी चारा फसला हरी खाद वाली फसला औषधी और मेथारी फसला साग भाजी री फसला बाग वाली फसला पुष्प और सुगंधी पौधा ई सब पौध अवस्था में है और अनारो उचित प्रबंधन भी जरूरी है। जा भी उपलब्ध जमीन है वंडी जलवायु और संसाधन रे अनुसार फसला में और उन्नत प्रजातियां रो चयन आपने करनो है। सही टाइम पे उपयुक्त विधियों वामणी करनी है। मिट्टी परीक्षण रे आधार पे संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन भी आपने करनो है और किसान भाया फसल री कांतिक अवस्था पे पाणतरा काम करना है। खरपतवार कीट और रोग नियंत्रण रा जरूरी उपाय भी आपने बेहद जरूरी है। किसान भाया ग्रीष्मकालीन खेती रे वास्ते अणा फसला ने विशेष रूप नमी तनाव बचानो भी जरूरी है। मिट्टी में उपयुक्त नमी प्रबंधन रे लारे लारे पाणत जल रे उपयोग दक्षता पे भी विशेष ध्यान देनो जरूरी है। अंडे लारे किसान भाया उपयुक्त सिंचाई री विधि और टेम पे चयन करने विशेष ध्यान देने आपने अना फसला में मई में किया जावा वाला जो काम है वी सब करना है। फसल रो कटाई रे उपरांत देखो प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। कई दांत किसान भाया अनाज भंडारण रे वास्ते उपयुक्त उपाय करवा रे बावजूद जरा सी लापरवाही या चूक वे जावे तो फसल उत्पादन में भारी नुकसान वे सके और साल भर री मेहनत पे पानी फिर जावे। अणी वास्ते आपाने जो है विशेष प्रबंधन कर लेना है। चना मटर और मसूर रे दाना पे सरसों मूंगफली सोयाबीन तिल और नारियल रो तेल 6-7 मिलीलीटर और 2 ग्राम हल्दी पाउडर प्रति किलोग्राम री दर उपचारित करने स्टील रे बर्तन में भंडारण कर सका। अंडे अतिरिक्त देखो वैज्ञानिक विधि निर्मित पात्र पूसा बीन पंत नगर कठुला हापुड़ बीन अणा सब रो उपयोग भी आपा कर सका। वैज्ञानिक तरीका देखो अनाज और बीज रो भंडारण करवाऊ कीड़ा नहीं लागेगा और देखो रोग रो प्रकोप भी कम वे जाएगा। अणी देखो अनाज और बीज लंबा टाइम तक स्वस्थ और सुरक्षित रह सकेगा। किसान भाया अनाज और बीज रे भंडारण रे पहली ठीक तरह वणा ने सुखाई लेना चाहे क्योंकि देखो अनाज में नमी वत्ती वेवा पे कई तरह रा कीड़ा जिसरे की अनाज रो पतंगो जने साइट्रोट्रोरिया सीरियलेला केवे दाल रो ढोरो और खपरा बीटल सूंड वाली सुरसरी गुन या पचे छोटा छिद्रक चामल रा पतंगा और आटा रा कीट ई सब अनारो प्रकोप बढ़ जावे। अणु ई सब धान जो आपा वामणी की दी और भंडारण में जरा सी चूक कर लांगा तो खराब हो जाएगा। भंडारण रे वास्ते धान्य वाली जो फसला है वणा में नमी री मात्रा 8-10% तक वेणी चावे। तिलहनी और दलहनी फसला में 6-8% नमी री मात्रा हाउ मानी गई है और देखो भंडारण रे टेम पे धान्य फसला रे बीजा में 10-12% वत्ती नमी वेवा पे कीड़ा और 14-15% वत्ती अगर नमी भी तो फफूंद जनित रोगारो प्रकोप वेवा लागे। अंडे लारेज देखो 15% वत्ती नमी वेवा पे बीजा री अंकुरण दर भी प्रभावित वे तो या चीज आपने ध्यान राखनी है और नमी री विशेष ध्यान राखनो है कि कतरी नमी आपने अनाज भंडारण में राखनी है और अंडे अनुसार ही आप नमी राखोगा तो जा मेहनत आपा करना सारा साल मेहनत की दी और देखो फसला उगई है उत्पादन भी वे गयो है हाउ और भंडारण में चूक कर दांगा तो ये आपनो उत्पादन जो है खराब वे सके अपनी मेहनत पे पानी फिर सके तो अणी बात रो आपने विशेष ध्यान राखनो है। भंडारण रे वास्ते देखो सब पहला भंडार गृह वाली जा भी जगह है मने हाउ तरीका साफ सफाई कर लेनी चाहे पुराना जी अवशेष है जैसे मकड़ी रा जाला है अणा ने निकाल ने साफ कर देना चाहे और दीवारा और फर्श पे पड़ी तकी जी दरारा है मना ने सीमेंट बंद कर देनो चाहे। कीड़ों बचाव रे वास्ते मेलाथियान 50 cc मात्रा रो 100 लीटर पानी में घोल मनाई ने भंडारण कमरा में हाउ तरीका छिड़काव कर देनो चाहे। अणी कमरा ने कम कम देखो 1 हफ्ता तक बंद राखनो है पछे अण में छिपिया तका जो कीड़ा वेगा वी नष्ट वे जाएगा। अगर देखो कीड़ा रो छिड़काव नियंत्रण नी वेरो वे तो 2 कीट प्रति किलोग्राम बीज या पछे अनाज में उपस्थित वेरो वे तो धुओ देवाऊ विषेला जी रसायन है वी कीट मर जावे। और देखो एल्यूमिनियम फास्फेट 1-3 गोली प्रति टन री दर थोड़ी

थोड़ी ऊंचाई पे रख देनी चाहे, छल्ली री गैस अवरोधी चादर ढक देनो चाहे, गोलियां हवा में नमी शोषित वेवे और फॉस्फिन गैस निकले जण्यू कई एक कीड़ा मर जावे। अगर मिथाइल बेमोटेन रो प्रयोग कर रहा किसान भाया तो ढेर में 3-5 मिली मिथाइल ब्रोमाइड प्रति 100 किलोग्राम अनाज राखवा रे केड़े बर्तन ने बंद कर देना चाहे। अणु कही वे कि बर्तन में गैस निकलेगा और कीड़ा मर जाएगा। अंडे अलावा किसान भाया एथिलीन डाइब्रोमाइट जिन्हें की ईडीबी के वे अंडी 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति टन बीज री दरू ध्रुमीकरण कर सका। अगर अनाज में नमी रे बीज पाउडर रे लारे मिलाई ने रखियो जावे तो कीड़ा रो प्रकोप नहीं वेगा। गोदाम में देखो बीज भंडारण रे वास्ते फर्श करीब 1 फीट ऊंचो एक लकड़ी रो प्लेटफॉर्म बनाई लेनो है, जो कि दीवार भी करीब 1 फीट दूरी पे रहना चाहे। बोरा ने गोदाम री दीवार सटाई ने कदी नहीं रखना चाहे, क्योंकि अगर कीड़ा वेगा तो भी दीवार रे जरिए जो है बोरा महीने पर आ जाएगा। तो अणी बात रो आपने ध्यान रखनो है। भंडारण हमेशा देखो जूट रा बोरा में करनो चाहे। नया बोरा रो प्रयोग कर रहे हाँ तो यो वत्तो हाउ रहेगा, और पुराना बोरा रो इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो 3-4 दिन तक वना ने तेज तावड़ा में सुखाई लेना है। पचे देखो गर्म पानी में धोई लेनो है।

सप्ताह तक कर सका। अंडे वास्ते देखो मूंगफली गेहूं फसल चक्र अपनाई सका, लेकिन देखो एक ही जमीन पे हर साल मूंगफली आपने नहीं उगानी है। अणी बात रो आपने ध्यान रखना है। अणी हूँ कई वेगा की जमीन में कई रोग पैदा हो सके। जायद मूंगफली री उन्नत किस्म की बात करा तो M522 M335 HB84 सिंचित क्षेत्र रे वास्ते और M37 बारानी क्षेत्र रे वास्ते और जटे वर्षा अच्छी वेरी वे वटे अनाने आपन लगाई सका। खरपतवार प्रबंधन री बात करा तो देखो मूंगफली री फसल में खरपतवार लगभग 40-45% तक उपज में कमी आई सके। मूंगफली री फसल शुरुआती 30-35 दनारी अवस्था में खरपतवार रे प्रति संवेदनशील वे खरपतवार निकालवारे वास्ते 3 सप्ताह रे केड़े आपने निराई गुड़ाई कर देनो हाउ रे वे। और उनमें देखो पहली निराई गुड़ाई वावणी रे 20-25 दना रे केड़े करनी है, दूसरी वावणी रे 35-40 दना रे केड़े करनी चावे। और मूंगफली री फसल में खरपतवार नियंत्रण रे वास्ते फ्लूरोक्लोरिरोन यानी कि बसालीन रो या पछे ट्रेप्लोन री 0.75 एक किलोग्राम प्रति हेक्टर सक्रिय तत्वरी मात्रा वावणी रे पहला मिट्टी में मिलाई देनो चावे। वावणी रे पहला खरपतवार नाशी रो प्रयोग किसान भाया नी किदो तो कोवे तो वावणी हूँ 1-3 दिन रे महीने आपने लासो री 1.5-2 किलोग्राम प्रति हेक्टर या पछे पेंडी मिथेलिन री 1-1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टर सक्रिय तत्वरी मात्रा रो छिड़काव हाउ तरीका मिट्टी में मिलाई ने कर देनो चावे। और देखो खड़ी तकी फसल में चोड़ी पत्ती और घास वाला जी खरपतवार है वंडे नियंत्रण रे वास्ते इमेज थापर 10% SL री 75-100 ग्राम प्रति हेक्टर सक्रिय तत्व री मात्रा रो वावणी रे 20-25 दना पे छिड़काव जरूर कर देनो है। तो अणी तरीका किसान भाया खेती बाड़ी रो काम करोगा तो पैदावार भी हाउ मिल सकेगा और मुनाफो भी बतो वेगा। अबे माने कार्यक्रम रो टेम पूरो वे तो चाला सा राम राम सा।

हमारे किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती में आज। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं और ये समय होता है सदाबहार नगमों का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए इस गाने के साथ। फिल्म का नाम है ये तेरा घर ये मेरा घर।

जी हाँ श्रोताओं, तेरे नाम फिल्म का गाना अभी आपने सुना। इस गाने को गाया अलका याग्निक और उदित नारायण ने। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ को। फिल्म है वीर ज़ारा।

0: धड़कन फिल्म का गाना अभी आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: साथिया फिल्म के गाने के साथ ही सदाबहार नगमों का ये सफ़र बस अब यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए आबो हवा।
1: प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है।

0: ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आबो हवा। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं सुगम संगीत। श्रोताओं, इस सेगमेंट में सुनिए कुछ गैर फिल्मी नगमे। कलाकार अभिजीत।

0: अभिजीत को अभी आपने सुगम संगीत कार्यक्रम में सुना। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए समाचार प्रभात, फिर 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज।
1: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार

0: समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकील केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रूपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रूपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और

0: मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचल क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की

0: प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था।
4: द कावर्डली टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम लास्ट ईयर आउटरेज द एंटायर नेशन एंड स्टर्ड डीप इमोशंस अक्रॉस द कंट्री। इन रिस्पॉन्स ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ

0: जो खो गया वो सबक है, जो मिलेगा वो इनाम होगा। बस यूं ही आगे बढ़ते रहना, हर मोड़ पे नया मुकाम होगा। हारना नहीं मुश्किल हालातों से, ये सफ़र एक दिन आसान होगा। विश्वास रख अपने कदमों पर, कल फिर तेरा ही नाम होगा।
1: बिल्कुल, इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज़ करते हैं उदयपुर के दैनिक और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का। आज के संडे स्पॉटलाइट के इस बेहद रोचक अंक के साथ आपके रेडियो सेट पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा श्रीमाली
0: और मैं हूं वृंदा। तो कबूल कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो नेहा, प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो गाना तो हम श्रोताओं को सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि आज के इस अंक में क्या क्या खास हम लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल वृंदा, कार्यक्रम के सबसे पहले सेगमेंट यानी कि वीक रिकैप में सप्ताह भर की प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नज़र, और उसी के साथ आईपीएल की अपडेट और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में करेंगे हम बातें।
0: ऐतिहासिक जानकारी के सेगमेंट में हम बताएंगे मेवाड़ में शास्त्रीय गायन का इतिहास।
1: बिल्कुल, और क्योंकि मनोरंजन का वादा है तो इन्फोटेनमेंट बाइट्स में हम बात करेंगे पुराने टीवी विज्ञापनों के बारे में जो हमें अपनी बचपन की याद दिलाते हैं।
0: इसके अलावा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रणव भावसार से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत होगी।
1: बिल्कुल, साथ ही लगेगा गीत संगीत का छौंका चाय की चुस्कियों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी उदयपुर।

और नेहा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे श्रोताओं को सप्ताह की मुख्य खबरें बता देते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 की शुरुआत 25 मई गंगा दशमी पर हुई। इस महाअभियान के तहत जलाशयों की साफ सफाई के साथ जन जागरूकता के संदेश दिए जा रहे हैं और जनभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक बहुत अच्छी खबर यह है कि शहर की पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। शहर की बनीता मुरलिया ने मिसेस इंडिया क्वीन सीजन 4 में अनस्टॉपेबल ब्यूटी का खिताब जीता। देखिए कितनी अच्छी खबर है। फिर विटामिन ए की कमी से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए जिले में विटामिन ए अभियान का 50वां चरण 29 मई से शुरू हुआ। इस अभियान में 9 से 12 माह तक के बच्चों को 1 ml और 1 से 5 साल तक के बच्चों को 2 ml विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। तो जो भी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके माता पिता इस बात का ध्यान दें और ये सुनिश्चित करें कि बच्चों को विटामिन ए की जो खुराक है वो ज़रूर मिले।

बिल्कुल वृंदा, तो इस आईपीएल मैच की धुन के साथ ही हम बढ़ रहे हैं आईपीएल मैच की अपडेट की तरफ। तो 30 मई यानी कल हुए आईपीएल मैच में क्वालिफायर 2 का मैच खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। और साथ ही जो ये आईपीएल का रोमांच है ना, आईपीएल का जो नवा सीजन का रोमांच है वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और फाइनल मुकाबला रविवार यानी आज शाम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम शाम 7:30 बजे गवाह बनेगा खिताबी मुकाबले का। 73 मैच और 2 महीने बाद

0: आईपीएल 19 को आज उसका चैंपियन मिल जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे ये फाइनल मैच खेला जाएगा और दोनों टीमों ने एक एक ट्रॉफी जीती है वृंदा, तो यानी कि इतना रोमांचक होने वाला है। क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, सबकी नज़रें टिकी होगी बस क्रिकेट स्कोरबोर्ड का, तो बस इंतज़ार है आज की शाम होने का।
1: बिल्कुल सही।

0: नेहा, आज के सेगमेंट में ऐतिहासिक जानकारी हम श्रोताओं के साथ साझा करेंगे कि मेवाड़ में शास्त्रीय गायन का इतिहास किस तरह का रहा।
1: बिल्कुल
0: तो देखा जाए तो मेवाड़ की धरती केवल वीरता और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि संगीत और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध रही है। प्राचीन समय से ही यहाँ के राजाओं ने संगीतकारों, गायकों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ। मेवाड़ के शासकों, विशेष रूप से महाराणा कुंभा ने संगीत और कला को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराणा कुंभा स्वयं संगीत के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने संगीत पर कई ग्रंथ लिखवाए और कलाकारों का संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में मेवाड़ संगीत का एक प्रमुख केंद्र बन गया था।
1: बिल्कुल वृंदा, महाराणा कुंभा स्वयं संगीत के गहरे ज्ञाता तो थे, साथ ही उन्होंने संगीत विषय पर संगीत राज और संगीत मीमांसा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करवाई और उन्हें संरक्षण भी दिया। इन ग्रंथों में भारतीय संगीत के सिद्धांतों, रागों और गायन परंपराओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। उनके संरक्षण में मेवाड़ संगीत अध्ययन और साधना का प्रमुख केंद्र बन गया। मेवाड़ के मंदिरों में होने वाली भक्ति संगीत परंपरा, विशेषकर वैष्णव और कृष्ण भक्ति से जुड़े पद गायन ने भी शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया। आगे चलकर ध्रुपद और हवेली संगीत जैसी परंपराओं को भी इस क्षेत्र में विशेष संरक्षण मिला।
0: अगर देखा जाए तो उदयपुर सहित मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में संगीत सभाओं, सांस्कृतिक आयोजनों और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से शास्त्रीय गायन की परंपरा आज भी जीवित है।

0: तो वृंदा, कितना सुंदर गीत हमने सुना। और जब बात गायन की और संगीत की होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में हमेशा रहती है और कभी कभी हमें बचपन की यादों में लेके चली जाती है। आपको याद है जब बचपन में गर्मी की छुट्टियों में हम अपनी दादी नानी के घर जाया करते थे, गाँव में एक गली में शायद एक ही घर में टीवी हुआ करता था, लेकिन गली के सारे बच्चे उस टीवी के सामने बैठ जाते थे झमके, और प्रोग्राम्स जो आते थे उनका आनंद लेते थे, और साथ साथ आनंद लेते थे जो विज्ञापन उसमें आते थे
1: बिल्कुल।
0: उनका भी।
1: अगर नेहा विज्ञापनों की बात की जाए तो वो विज्ञापन ही डिफरेंट तरीके के होते थे।
0: बिल्कुल
1: मतलब इतने कनेक्ट करते थे हम उन विज्ञापनों से, क्योंकि उसमें बहुत सारे इमोशंस होते थे। और कुछ ऐसे बनते थे विज्ञापन जिसमें हम अपने ही किरदारों को देख पाते थे।
0: बिल्कुल, वो मनोरंजन का विज्ञापन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, और उनके संवाद और जिंगल इतने लोकप्रिय होते थे कि बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ जाते थे।
1: आज भी वो मतलब जो पुराने विज्ञापन हैं वो आज
0: हाँ,
1: भी हमें याद है।
0: और बिल्कुल, और उन विज्ञापनों में इतनी सादगी थी, ना कोई बड़ी तकनीक थी, ना कोई चकाचौंध थी, ना इतना प्रभाव था, लेकिन उनका उनकी सरल कहानी, उनका मधुर संगीत और उनका दिल छू देने वाला संदेश, यही कारण है कि दशकों बाद भी ये विज्ञापन हम सबकी स्मृतियों में जीवित है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जब भी हम उन विज्ञापनों को देखते हैं, सुनते हैं, तो वापस से याद आ जाता है अपना वो बचपन, वो गली, वो टीवी के सामने बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ उन प्रोग्राम्स को देखना, साथ में विज्ञापन के समय भी कहीं नहीं जाना और चिपक के टीवी के
0: हाँ,
1: सामने
0: और
1: बैठे
0: कभी कभी तो
1: रहना।
0: ऐसा होता है कि विज्ञापन जो चल रहा है, जो गीत चल रहा है, जिंगल चल रहा है, वो हम साथ साथ में गुनगुनाते थे, साथ साथ में
1: बिल्कुल।
0: गाते थे, और वो विज्ञापन इतने अच्छे थे कि वो हमें हमारे समाज की तस्वीर दिखाते थे कि परिवार में साथ बैठकर खाना खाना, बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे, और रिश्तों में जो है वो अपनापन झलकता
1: पता
0: था।
1: है जब हम अभी बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया एक विज्ञापन जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है और वो घर छोड़ के जा रहा होता है, फिर उसको कोई मिलता है उसके गांव का और याद दिलाता है जलेबी की, और वो जलेबी के चक्कर में, मतलब वो एक एड था बट देन
0: खुशबू,
1: वो
0: बिल्कुल।
1: वापस घर बच्चा आता है। इतना सुंदर विज्ञापन है कि उसे जब भी देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल।

0: वृंदा, आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हो?
1: इसमें पूछने की क्या बात है, बिल्कुल करती हूँ।
0: लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हर कोई अपनी जिंदगी से प्यार करता है।
1: अरे भाई, ऐसी बात ही क्यों आई आपके मन में?
0: अरे देखो ना, भारत में लगभग 26.7 करोड़ व्यसक किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। सिगरेट नहीं बल्कि गुटखा, खैनी, जर्दा, बीड़ी और अन्य धूम्ररहित तंबाकू उत्पाद भी बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं, और हर साल 13.5 लाख लोगों की मृत्यु का कारण बनती है ये तंबाकू।
1: ओहो, अच्छा मुझे समझ में आया, क्योंकि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है इसलिए आपने ये आंकड़े हमारे श्रोताओं को बताए।
0: बिल्कुल,
1: सबसे पहले WHO ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की, और इस दिन को मनाने के पीछे कारण यही था कि लोग जागरूक हों और इस एडिक्शन से, इस जो लत है, इससे छुटकारा मिल पाए।
0: बिल्कुल, तंबाकू एक आदत नहीं बल्कि ऐसी लत है जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है, और इंसान के फेफड़े, कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, श्वसन संबंधी समस्या और अन्य गंभीर रोगों का कारण बनती है।
1: बिल्कुल नेहा, हम और भी बातें करेंगे, श्रोताओं को जानकारियां देंगे,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी जो है, अगर हम बात करना चाहें तो हम थीम बता सकते हैं, उसके बाद हम जो न्यूज़ आएगी उसके उस पार विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला नोडल अधिकारी से जो गजेंद्र सिंह राठौड़ जी की बातचीत है वो सुनवाएंगे। तो आज की थीम क्या है आज के दिन की?
0: आज के दिन की थीम है अनमास्किंग द अपील, यानी काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। अगर हिंदी में हम बात करें तो आकर्षण के पीछे की सच्चाई उजागर करें, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब हम घड़ी की तरफ देखें तो सुबह के 9 बजने वाले हैं। हमारे जयपुर केंद्र से हम सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, और समाचारों के बाद बातचीत सुनना न भूलिएगा।
2: का जयपुर अजमेर केंद्र है, सवेरे के 9 बजने को है। अब प्रसारित होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श।

0: सत्रों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पेश है न्यूज डेस्क से मन की बात कार्यक्रम पर डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
1: साल 2014 से शुरू हुआ प्रधानमंत्री श्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों से संवाद का एक प्रभावी मंच है। इसमें प्रधानमंत्री सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, साथ ही आम नागरिकों की उपलब्धियों और प्रेरक कहानियों को भी सामने लाते हैं। ये कार्यक्रम जन भागीदारी को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हर महीने के अंतिम रविवार को ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शौर्य वाटिका खुला नौसेना संग्रहालय है। श्री सिंह ने बताया कि नौसेना को दुश्मन पर निरंतर दबाव बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी और ताकत के साथ अरब सागर में तैनात की।
2: आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: फुलेरा के पास हिरनौदा गांव में थार ड्राईपोर्ट बनाया गया है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल इसका उद्घाटन किया। ये हस्ती पेट्रोकेमिकल और शिपिंग लिमिटेड HPCSL की इकाई है। इससे सड़क और रेल मार्ग के जरिए कंटेनर आवागमन की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक स्थानों पर जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 92,000 से ज्यादा जल स्रोतों और 42,000 से अधिक सरकारी भवनों की सफाई की गई। 52,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया। वहीं हरियाणा और राजस्थान में पौधरोपण के लिए 36,000 से ज्यादा पिट खोदे गए। साथ ही करीब 32,000 कलश यात्राएं निकाली गईं। अभियान के तहत आज प्रभात फेरी, रैली, श्रमदान, बावड़ियों की साफ सफाई करने के साथ ही नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। वहीं कल खेती संबंधी कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट

0: न्यूज ऑन air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। इससे सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अलवर में रेत का बवंडर आया। इस दौरान 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और समूचे वातावरण में धूल का गुबार छा गया। पीली काली आंधी से दिन के समय ही अंधेरा हो गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज अंधड़ से कई जगह घरों और औद्योगिक क्षेत्रों में लगे टीन शेड और सोलर पैनल उड़ गए। विभिन्न स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। वहीं खरीद केंद्रों पर रखी गेहूं की बोरियां भीग गईं। उधर अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, चूरू और बारा में अंधड़ के साथ बारिश भी हुई। जयपुर जिले में ग्रामीण इलाकों में बरसात के साथ ओले गिरे। बरसात से तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज 11 शहरों में आंधी बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की आत्मा साहित्यकारों में बसती है। साहित्य केवल शब्दों का सृजन नहीं है बल्कि संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का संवाहक है। श्री बिरला कल कोटा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महाअधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लेखकों से प्राचीन साहित्य कृतियों के डिजिटलीकरण करने का आग्रह किया जिससे भारतीय ज्ञान परम्परा को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जा सके।
1: भारत के साहित्यकार, कवि, लेखकों ने अलग अलग कालखंड के अंदर भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया, देश में रचनात्मक दिशा दी, रचनात्मक दृष्टिकोण दिया और रचनात्मक विचार दिया। आने वाली पीढ़ियों को भारत के साहित्यकार, गीतकार, लेखकों से जो उनके ज्ञान के भंडार हैं उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता है ताकि हम भारतीय संस्कृति के विचार दृष्टिकोण को अपने जीवन में लाकर देश और राष्ट्र की प्रगति और देश राष्ट्र की सेवा में लगे रखें।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में 22 मई से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। 23 मई तक चलाए गए इस अभियान में 2000 से ज्यादा चालान किए गए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। आज प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध संबंधी परामर्श सत्र रखे गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने लोगों से तंबाकू, सिगरेट, हुक्का और अन्य नशों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी टक्कर होगी। ये फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज। प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: और नमस्कार उदयपुर प्रोग्राम में एक बार फिर से हम हमारे श्रोताओं का स्वागत करते हैं।
3: बिल्कुल, तो आज कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ रेडियो दोस्त नेहा
2: और मैं वृंदा। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा हमने न्यूज़ से पहले बात की थी कि न्यूज़ होने के बाद हम सुनवाएंगे बातचीत, तो नेहा हम भी मिलकर सुनते हैं ये बातचीत जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रणव भावसार से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत है ये, तो चलो सुनते हैं।
4: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस

0: और इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर प्रणव भावसार। आप जिला नोडल अधिकारी हैं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, जो आज हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले आप बताएं कि इस दिवस को मनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्या उद्देश्य है, और हर वर्ष की भांति, क्योंकि हर एक किसी डे को मनाने के पीछे कोई ना कोई थीम या कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस वर्ष की थीम क्या है?
1: जी, वैसे तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंदर वर्ष भर अपन जो भी हैं अपनी प्रयास करते हैं इसमें नियंत्रण संबंधित गतिविधियों के, परंतु एक दिवस अपन तय करते हैं जो इस बार हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस दिन मनाने का वजह बस ये है कि ताकि इस कार्यक्रम संबंधी जो भी गतिविधियाँ होती है उसको थोड़ा व्यापक तौर पर उसका विज्ञापन हो। और इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो है ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशंस, मतलब जो युवाओं को लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं तंबाकू के उत्पादों को लेकर, तो उसको उजागर करना। कहने का मतलब कि युवा जिस तरह से प्रभावित हो रहे विज्ञापनों को और इनको देख के, ताकि उनको ये समझाया जाए कि इस तरह से तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करना आपके लिए कितना हानिकारक है।
0: डॉक्टर साहब, क्योंकि तंबाकू जब भी हम बात करते हैं, तंबाकू या निकोटीन प्रोडक्ट शरीर के लिए हानिकारक होता है, कैंसर कारक होता है, कई बीमारियां इस तंबाकू के सेवन से होती है, लेकिन खास तौर पे जो आपने कार्यक्रम में कहा भी, हर वर्ग के लोग इस तंबाकू का सेवन हम अमूमन देखते हैं कि करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन खास तौर से अभी आपने युवाओं की बात की, और युवाओं में तंबाकू सेवन का जो बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका है, इसका प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं?
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि तंबाकू उत्पाद के प्रयोग से मुंह का कैंसर या फेफड़ों का कैंसर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर के अपने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो तंबाकू उत्पादों से प्रभावित ना होता हो। उसके बावजूद जिस तरह से आजकल विज्ञापन वगैरह दिखाए जाते हैं, लुभाने के प्रयास किए जाते हैं स्पेशली युवाओं को, क्योंकि तंबाकू इंडस्ट्री का यही प्रयास रहता है कि एक बार कोई कम उम्र आयु वर्ग का उनसे जुड़ गया तो जीवन पर्यंत वो उसका आदि बन जाएगा और उनको इस तरह से उनके अर्निंग होगी। कहने का मतलब तो उनके प्रयास यही रहते हैं कि युवाओं को जोड़ा जाए इससे, और युवा जैसा कि अपने को पता है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो इजीली इन चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो अपने आप को आधुनिक जनसमूह का हिस्सा बनाने के लिए इस तरह के प्रयास शुरू कर देते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जो आपने बात की युवाओं को लेकर, इसमें एक प्रमुख चीज़ है कि जो हम बात भी कर रहे हैं विज्ञापनों को लेकर, आजकल देखा गया है कि निकोटीन प्रोडक्ट्स जो है सोशलाइजिंग का भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुके हैं। कई जगह हम शहरों में देखते हैं, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स या फिर कहीं जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर युवा एकत्रित होते हैं और ये धूम्रपान करते हैं, और कई बार ये भी हमने देखा है कि उन्होंने अपने लुक और अपने गेटअप को इस तरह से ले लिया है कि किसी न किसी फिल्मी कैरेक्टर्स या किसी मॉडल, और उसको ऐसा करते हुए देखने के चक्कर में वो कूल बनने की कोशिश करते हैं। आम तौर पर ये जो जेन जी जनरेशन है इसमें काफ़ी लिप्त है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो कुछ समय के लिए कूल दिखने वाली जो प्रवृत्ति है, युवाओं के भविष्य को कितना बर्बाद कर सकती है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल तरह तरह के उत्पाद भी नए नए मार्केट में आ गए हैं। एक समय था सिर्फ बीड़ी गुटखा इस तरह की चीज़ें चलती थी, पर अभी काफ़ी हुक्का भी काफ़ी प्रचलन में आ गया। वैसे हुक्का पुराना है बट आजकल यूथ काफ़ी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगा।
0: फ्लेवर्ड हुक्का के रूप में,
1: फ्लेवर्ड हुक्का भी अलग अलग फ्लेवर्स, और ये वो उनको ऐसा लगता है कि मीठे और अच्छे गुड स्मेलिंग है, अट्रैक्टिव है, तो वो ज़्यादा कि ये शायद हार्मफुल नहीं होंगे। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जिसको वेप कहते हैं, वो भी बिना मतलब उसमें माचिस की भी ज़रूरत नहीं होती, तो ये लोग कहीं पे भी इस तरह से इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। और मतलब उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हम कूल दिखेंगे, जबकि एक्चुअल में अपन अच्छे से जानते हैं कि तंबाकू उत्पाद कितने हानिकारक हैं।
0: डॉक्टर साहब, जब इनसे जुड़ी प्रमुख बीमारियों की बात करते हैं, तो आपने हालांकि जिक्र किया है कि मुंह का कैंसर और विभिन्न प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, लेकिन एक बात आपने कही कि सर से लेकर पैर तक ऐसा कोई अंग नहीं है जो इस निकोटीन या तंबाकू उत्पादों से प्रभावित ना हो, तो कैंसर के अलावा और कौन कौन सी बीमारियाँ हमारे शरीर में इन निकोटीन प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकती है?
1: शरीर के जो भी अपने अंग हैं, शरीर के सारे ही अंगों में ब्लड सर्कुलेशन होता है, और अगर निकोटीन एक बार आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो जो भी ये अपनी बीमारियां होती है, लीवर से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, जैसे अस्थमा हो गए, फैटी लीवर, सिरोसिस, ये सभी, तो ये सारी डिजीज़ कि रिस्क फैक्टर में तंबाकू का नाम आपको

0: जरूर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर के जो भी अपने मुख्य अंग हैं उनसे संबंधित जितने भी बीमारियां हैं उन सभी का रिस्क फैक्टर तंबाकू है।
1: डॉक्टर साहब, एक और प्रमुख बात यह कि हमने कई बार देखा है चाय की थड़ी पर या फिर रेस्टोरेंट में या कहीं पब्लिक गैदरिंग में हमने देखा है कि एक ग्रुप के लोग खड़े हैं, कुछ 6-7 व्यक्ति खड़े हैं, उनमें से 2-3 सिगरेट पी रहे हैं और बाकी लोग पास में खड़े हैं। लेकिन जब पूछा जाने पर कि क्या इसका कोई इफेक्ट होगा, मैं तो सिगरेट नहीं पीता तो मुझे क्या असर होगा, तो ये जो पेसिव स्मोकिंग है, ये टर्म काफ़ी विगत कई वर्षों में काफ़ी प्रचलित रही है इस स्मोकिंग को लेकर, तो क्या एक पेसिव स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है इन बीमारियों को लेकर?
0: बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष धूम्रपान, जिसका सीधा सा डाटा अपने पास उपलब्ध है। 10% ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है जो
1: ई सिगरेट और वेपिंग जो है आपकी एक तरह से हैबिट को छुड़ाने के लिए एक बेस्ट

0: ई सिगरेट और वेपिंग जो है आपकी एक तरह से हैबिट को छुड़ाने के लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव मान लिया गया है, लेकिन उस हैबिट के पीछे वो उसके आदि हो जाते हैं। तो एक तो डायरेक्ट निकोटिन और ये ई सिगरेट और वेपिंग जिसको हम कह रहे हैं, इन दोनों में कितना अंतर आप मानते हो?
1: ये इन्फेक्ट और ज़्यादा हार्मफुल होती है लोगों को। काफ़ी बड़ा मिथ है कि इसमें हम डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं। जस्ट इमेजिन, एक में आप माचिस लगा के आग लगा रहे हो और फिर इनहेल कर रहे हो, और एक बैटरी जनरेटेड कार्ट्रिज जो होती है उसमें साथ में, और डिफरेंट एरोसोल्स दूसरे केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, बेंजीन हो गए, कार्बन मोनोक्साइड, इस तरह के। तो इस वजह से अदर कंट्रीज़ में तो इसको बैन भी कर दिया गया, क्योंकि पॉपकॉर्न लंग्स की शिकायतें आ रही थी। अदर स्टडीज़ जो देखी गई, लंग्स बच्चों के और बड़ों के जो वेप्स यूज़ कर रहे थे उनके लंग्स पॉपकॉर्न के जैसे हो रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी स्तर पे सुरक्षित है।
0: डॉक्टर साहब, एक अच्छी बात आपने की कि बच्चों में ये पॉपकॉर्न लंग्स जो आपने सिम्टम्स बताए बच्चों की आपने बात की। हालांकि सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं कि स्कूल और कॉलेज के आसपास कुछ दायरे में प्रतिबंधित क्षेत्र बनाए हैं, वहाँ पर ये सिगरेट, निकोटीन, तंबाकू उत्पाद नहीं मिलेंगे, लेकिन आम तौर पर हमने देखा है कई जगह इस तरह से शिकायतें मिलती कि वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई स्कूल में पढ़ रहा है, 11वीं 12वीं का बच्चा है जो कॉलेज भी नहीं गया है, और अगर उसको इस तरह की चीज़ खाना या सेवन करना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तो ये जो निकोटीन का एडिक्शन है ये कितना प्रभावी हो जाता है किसी व्यक्ति के लिए कि एक बार उसे लत पड़ जाने के बाद उसे छुड़वाना मुश्किल होता है, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआती दौर पे अगर एक बार शुरू कर दिया, सब इनिशियल स्टेज पे सब जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए एक बार शुरू कर देते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे फिर उसके एडिक्ट होते जाते हैं। अब एडिक्शन का मतलब ये है कि आप एक तरह से डिपेंडेंसी होगी आपकी निकोटीन के ऊपर। आपको वो नहीं मिला तो एक तरह से व्याकुलता और अनिद्रा, रात को नींद नहीं आना, बेचैनी, इस तरह के सिम्टम्स उनको आने लग जाते हैं, जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर उनको इस व्याकुलता के चलते और उपयोग करना पड़ता है, इस तरह से उनकी हैबिट्स और ज़्यादा बढ़ जाती है।
0: अगर सर इस निकोटीन एडिक्शन या तंबाकू उत्पादों के सामाजिक दृष्टिकोण पर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी पर्सन है जो इन तंबाकू उत्पादों का प्रयोग कर रहा है, तो उसके परिवार और उस पर समाज पर इसका क्या प्रभाव आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है, और किस तरह से उसकी दैनिक गतिविधि और सामाजिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कोई गुटखा वगैरह खाते हैं, अपने को पता है उनके धीरे धीरे टीथ्स वगैरह में प्रॉब्लम, फाइब्रोसिस हो जाता है, मुंह की ओपनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, और फिर वो धीरे धीरे डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाके दिखाएंगे, और फिर मान लो लंबे टाइम से कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करता आ रहा है, तो धीरे धीरे उसमें अन्य जो तंबाकू से संबंधित बीमारियाँ होती है, बड़े बड़े कैंसर की बात नहीं कर रहा फिलहाल, तो इनिशियल स्टेज पर भी अलग अलग डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से उनकी जो अपनी अर्निंग जो है उसका काफ़ी हिस्सा एक तो इनके उत्पादों को उपयोग में, साथ ही साथ इससे होने वाले जो हानिकारक प्रभाव हैं उन पर भी खर्च हो जाता है। तो सिर्फ तंबाकू नहीं, जो भी इस तरह के नशे संबंधी चीज़ें होती हैं उसमें सिर्फ एक व्यक्ति स्वयं नहीं अपने पूरे परिवार को उसमें लिप्त कर देता है।
0: डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हालांकि जिन तंबाकू उत्पाद के सेवन से जो हम खतरों की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एक व्यक्ति के जीवन के लिए एक भयावह या काला सच बन के सामने आते हैं, लेकिन साथ ही एक सबसे बड़ा सच तो उनके पैकेट्स पर ही दिखाई देता है। आजकल देखा गया है कि सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के ऊपर कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों के फोटो और इमेजेस, डरावने इमेजेस रखे जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जागरूकता के इस क्रम में इस तरह के विज्ञापन देना और लोगों को जागरूक करना कितना विगत वर्षों में कितना प्रभावी साबित रहा है?
1: सही कहा आपने। एक्चुअली क्या होता है, इसमें धारा 7 के अंतर्गत जो कोटपा की होती है, प्रतिवर्ष जैसे इस वर्ष भी इसकी थीम के मुताबिक वार्निंग बदल जाती है। फिलहाल जो वार्निंग चल रही है वो है तंबाकू से दर्दनाक मृत्यु होती है। ये हर वर्ष थीम बदलती है। 85% इसमें वार्निंग होती है, 60% तो पिक्टोरियल वार्निंग जिसमें चित्र बना हुआ होता है, जिसमें मुंह का कैंसर दिखाया हुआ होता है, और 25% ये जो लिखी हुई रहती है वार्निंग, जैसे इस बार लिखी है तंबाकू से दर्दनाक मृत्यु होती है। तो जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं सिगरेट को, तो वो उसको देखते हैं, बट होता है क्या है कि वो आदी हो जाते हैं रोज़ इसी फोटो को देखने की। तो सरकार के ये प्रयास रहते हैं कि हर वर्ष इस फोटो को बदल दिया जाए, ताकि उनको उस इमेज को देख के ऐसा रियलाइजेशन हो कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, आपने अभी एक कोटपा वर्ड यूज़ किया और उसकी धारा बताई, हमारे श्रोताओं का बताओ कि कोटपा क्या चीज़ है, मतलब किस चीज़ की धाराएं हैं ये?
1: कोटपा की फुल फॉर्म है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। तो इसके अंतर्गत अलग अलग धाराएं होती है, धारा 4, धारा 5, 6, 7, जिसके अंतर्गत धारा 4 के अंदर सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान प्रतिबंध। बहुत से लोग मुझे कई बार पूछते

0: है कि आप इतने अधिनियमों की बात करते हो, कुछ इसका इम्पैक्ट आता भी है क्या? तो इसका मैं एक जवाब दूंगा। एक समय था जब बस में, ट्रेन में लोग सिगरेट बीड़ी पीते थे और साथ वाले बैठे हुए जो पैसेंजर वो कुछ बोल नहीं पाते थे, पर अभी वर्तमान में इन चीज़ों का उपयोग पूरी तरह से इनक्लोज स्पेसेस जो है वहाँ बंद हो गया है। तो एक धारा 4 का जो है इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोग्राम के अंदर बेहतरीन तरीके से हुआ है।
1: तंबाकू को सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग में न हो, इसके लिए तो काफ़ी प्रभावी कदम सरकार द्वारा उठाए गए, लेकिन साथ ही साथ सरकार द्वारा इन उत्पादों को कम बिक्री हो, युवाओं और समाज को इसकी लत से बचाने के लिए और क्या क्या प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि आप स्वयं जिला नोडल अधिकारी हैं तंबाकू कार्यक्रम के, तो आप अपने शहर में इस तरह की कौन कौन सी गतिविधियाँ कर रहे हैं जिससे इनके उपभोग को नियंत्रण में लाया जा सके?
0: जिला स्तर से एक तो अपने जन जागरूकता गतिविधियां व्यापक तौर पे चलती है। अभी भी एक अपना अभियान पूरे राजस्थान में चल रहा है 25 मई से, जिसके अंतर्गत VHSNC जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी होती है विलेज लेवल पे, इसी तरह से अर्बन में मास कमेटी, महिला आरोग्य समिति, इनके द्वारा जन जागरूक गतिविधियाँ जैसे नारा लेखन और वो सब किया जा रहा है। इसी तरह से शिक्षा विभाग के साथ मिल के विद्यार्थियों के अंदर तंबाकू नियंत्रण संबंधित जो भी हैं गतिविधियाँ, जैसे पोस्टर हो गया, स्लोगन राइटिंग हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा कर और उनमें पुरस्कार वितरित करके विद्यालय स्तर पर भी जन जागरूक गतिविधियाँ की जा रही हैं। और एक आपने सुना होगा नो बैग डे, महीने के शनिवार को नो बैग डे स्कूल में मनाया जाता है। उस दिन स्कूल में पढ़ाई के अतिरिक्त जो गतिविधियाँ वो होती है, तो उसमें भी तंबाकू संबंधित गतिविधियों का काफ़ी व्यापक तौर पे ऐसी जन जागरूकता गतिविधियाँ हो रही है।
1: डॉक्टर साहब, जितने भी आप ये जन जागरण के कार्यक्रम चला रहे हैं, साथ ही साथ काउंसलिंग सेंटर्स और डी एडिक्शन सेंटर्स जो आपके द्वारा ये चलाए जा रहे हैं जिससे इन उत्पादों का उपभोग कम हो, लोगों की जान बचाई जा सके, इनका कितना प्रभाव आप विगत कुछ वर्षों में देख रहे हैं और कितने प्रभावी साबित हुए हैं ये सारे कार्यक्रम?
0: हमने पिछले कुछ वर्षों में जिले में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे दंत चिकित्सक नियुक्त हैं, उन सभी दंत चिकित्सकों की तंबाकू मुक्ति उपचार केंद्र से संबंधित जो भी परामर्श सेवाएं होती है उनका प्रशिक्षण दिया है, जो राज्य स्तर से दिया गया है। तो वो सभी लोग इस चीज़ के लिए ट्रेंड हैं कि अगर कोई उनके पास तंबाकू का आदि पर्सन आए और वो अपने जो भी हैं समस्याएं वो अगर उनके सामने रखे तो वो प्रॉपर काउंसलिंग करके जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उसके जरिए उनको तंबाकू का जो

0: कार्रवाई होती है, उनका प्रशिक्षण दिया है जो राज्य स्तर से दिया गया है, तो वो सभी लोग इस चीज़ के लिए ट्रेंड हैं कि अगर कोई उनके पास तंबाकू का आदि पर्सन आए और वो अपने जो भी हैं समस्याएं वो अगर उनके सामने रखे, तो वो प्रॉपर काउंसलिंग करके जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उसके जरिए उनको तंबाकू का जो एडिक्शन है उसको हटा सकें। इसमें सबसे पहले तो दृढ़ इच्छा शक्ति इंसान की स्वयं की होनी चाहिए कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। बाकी प्रयास जो भी हैं जो रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए किए जा सकते हैं, तो वो इस काउंसलिंग सेंटर से किए जा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट काफ़ी आ रहा है। हम लोगों के वीडियोस हमारे पास आते हैं कि हम इस तरह से इतना उपयोग करते थे, अब हमने इस तरह से पूरी तरह से इसको बंद कर दिया है, तो वो काफ़ी खुश हैं। और इनिशियल स्टेज पे अगर मान लो इन चीज़ों को जो आदि हैं उसको रोक दिया जाए तो ये रिवर्सिबल होती है। जैसे मान लो लंग्स पे और उन पे जो भी असर आया है वो रिवर्सिबल होता है।
1: डॉक्टर साहब, अगर अगर बात की जाए, क्योंकि तंबाकू निषेध दिवस है आज और हम कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इन उत्पादों का सेवन नहीं करना चाहिए और बचना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति जो अपना कार्यक्रम सुन रहा है या इस स्पेशल डे पे जो आपके द्वारा जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं उसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, मुझे तंबाकू उत्पाद छोड़ देना चाहिए, तो एक पहला कदम क्या होगा और किस तरह से उसे अपने इस जो दृढ़ इच्छा शक्ति की आपने बात की उसे कायम रखा जा सके?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो जो भी चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी को ये बात खुद को भी उनको अंदर ही अंदर मन में पता है कि ये चीज़ हानिकारक है, पर एक ईगो कहो या एक ऐसा व्यक्ति का नेचर होता है कि नहीं, इन चीज़ों से मुझे तो शायद कुछ नहीं होगा, तो इस तरह से वो उपयोग करते चलते हैं। तो मेरा उन सभी से यही कहना है कि ये बहुत ही हानिकारक है, आप बिल्कुल इसको ऐसे हल्के में ना लें, क्योंकि एक बार अगर इसके आदि हो गए तो भविष्य में खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। फिर उस समय रियलाइज़ होगा कि हाँ ये किस वजह से हुआ। तो मेरा बस इन सब से यही पहले है कि इस तरह से अपने आप को ऐसा नहीं समझें कुल दिखने के प्रयासों में कि इन चीज़ों का उपयोग करें।
1: जाते जाते आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जितने भी हमारे श्रोता हैं उनको आप, खास तौर से युवाओं को, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे वो इस तंबाकू उत्पादों को छोड़कर एक स्वस्थ एंड निरोगी जीवन जी सकें?
0: यही जो भी अब मैंने आपको बताया एक तरह से उसी की पुनरावृत्ति कहूँ कि तंबाकू उत्पादों का प्रयोग जिस तरह से हानिकारक है, अगर मान लो आपको लगता है कि आप इस चीज़ के एडिक्ट हो चुके हो, ऐसा रियलाइजेशन तब होता है कई बार, जैसे राजस्थान के जो प्रयास हैं राजस्थान सरकार के कि महीने का जो अंतिम दिवस होता है उस दिन तंबाकू उत्पादों की बिक्री ना हो और उस दिन उपयोग ना हो, ऐसी अपील है जनता से। तो इसको अगर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तब हो सकता है कि जो लोग इसके आदी हैं उनको उस दिन अगर वो सच में ना मिले प्रोडक्ट, तब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कितना व्याकुल हो रहा हूँ और मैं इसका कितना आदी हो चुका हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये रियलाइजेशन होना युवाओं को बहुत ज़रूरी है कि ताकि उनको पता चले। होता क्या है, उनको रोजाना जीवन में चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं तो उनको पता ही नहीं है कि वो इस चीज़ के एडिक्ट हो चुके हैं। तो मेरा बस युवाओं से यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों में आप एडिक्ट हो चुके हो, तो आप निकटवर्ती जो भी तंबाकू मुक्ति उपचार केंद्र हैं वहाँ जाके अपनी प्रॉपर काउंसलिंग करवाएं और इसका निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए अपना तंबाकू का जो एडिक्शन हुआ है उसको बंद कर सकें।
1: तो आप थे डॉक्टर प्रणव भावसार, जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, और आज आपने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमारे श्रोताओं के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: तो नेहा, अभी हम सुन रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रणव भावसार से गजेंद्र सिंह राठौर की बातचीत, और जब बातचीत चल रही थी तो सुन के अच्छा लग रहा था और ये भी मन में ख्याल आ रहा था जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं सच में वो जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। जिंदगी इतनी सुंदर है, खूबसूरत है, और कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से इंसान की जिंदगी मिलती है।
3: बिल्कुल। और जैसे कि हम सुन भी रहे थे कि तंबाकू जो है सिर्फ उस व्यक्ति को ही बर्बाद नहीं करती जो उसका सेवन करता है, बल्कि हम देखेंगे जो पेसिव स्मोकर होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, या आसपास में जो घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर भी ये बहुत बुरा प्रभाव डालती है।
2: तो हम तो यही कहेंगे श्रोताओं से कि अपने को बचाइए और ये जो अमूल्य जीवन मिला है उसकी सच में कद्र करिए।
3: बिल्कुल। और जिंदगी से प्यार करिए। एक्चुअली जैसे हम लोग बात की थी, इस बात की शुरुआत ही हमने इसी से की
2: लव यू जिंदगी।
3: बिल्कुल, ये जिंदगी प्यार करने के लिए है।

0: लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए, ना कि अपने शरीर में ही एक गंदा जहर घोलने के लिए, क्योंकि हम खुद भी देख रहे हैं कि जो इसके असर हैं बहुत बुरे हैं। परिवार के सदस्यों को, लोगों को, जान पहचान वालों को हमने इससे लड़ते हुए देखा है, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन असर इन्हीं चीज़ों का होता है।
1: बिल्कुल सही कहा नेहा आपने।
0: हाँ
1: वैसे तो हम बातें और ढेर सारी कर सकते हैं, लेकिन घड़ी की तरफ देखिए और समय हो चला है। तो नमस्कार उदयपुर के आज के अंक में थे आपके रेडियो दोस्त, मैं वृंदा, और मेरे साथ
0: मैं नेहा, तो दीजिए
1: दीजिए
0: हम दोनों को इस कार्यक्रम से अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं सुगम संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ गैर फिल्मी गाने और इस प्रोग्राम में आज कलाकार सोनू निगम।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस

0: का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
5: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
6: तो फिर सही नंबर,
5: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
6: आपने तो बचा लिया दीदी।
5: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

सोनू निगम को अभी आपने सुगम संगीत कार्यक्रम में सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। श्रोताओं, इस सेगमेंट में हम सुनवाएंगे कुछ चुनिंदा पुराने गाने जो हमेशा अच्छे लगते हैं। सबसे पहला गाना लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में, फिल्म है दो जासूस।

دل میں محبت ہے کیا جس میں عورت ہے بس جنت ہی جنت ہے.

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़ी, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सत्य पे सत्ता इस फिल्म का गाना सुना। अब सुनते हैं अभिजीत को फिल्म है जोश।

बड़े अच्छे लगते हैं ये गाना भी आपने सुना, जिसे हमने चुना था फिल्म बालिका वधू से, आवाज़ अमित कुमार की थी। लीजिए अब एक और बहुत ही अच्छा सा गाना आपको सुनवाते हैं बड़े दिलवाला फिल्म से, लता मंगेशकर और उदित नारायण का गाया हुआ।

ये आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम ब्लैकमेल। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है स्वयंवर।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देख

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देख।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने आंधी फिल्म का नगमा सुना। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गाना। फिल्म है दिल का रिश्ता। मिली जुली आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की।

इस गाने के साथ ही पुरानी फिल्मों से ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10:55 होने को हैं। अगला विशेष प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा। प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
13: नमस्कार सर। नमस्कार।
14: नमस्कार सर।
2: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की

0: बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी

0: नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान

और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में

चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्ट

मेडिकल डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए
प्रकृति की एक अमूल्य

के धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के

इसे सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा।
बहुत बहुत

0: धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्ड राज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वानपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशम् बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शत मीटर मित धावन स्पर्धा इत्येषा, अर्थात शत मीटर मित धावन क्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुष वर्गीये शत मीटर मिते धावन क्रमे राष्ट्रिय मानांकनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्याम क्रीडकाभ्याम एतत् भद्र प्रदर्शनं कृतं तौस्तः गुरिन्दर वीर सिंहः, अनिमेष कुजूरश्च। अहम् चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्याम् क्रीडकाभ्याम् सह वार्ताम् कुर्याम्। प्रधानमन्त्री अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दर वीरः भवतेऽपि नमस्कारः। सत्श्री अकाल च। अनिमेष गुरिन्दर वीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद् युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं संगीते तु युगल प्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगल प्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमं एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत् समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति।

0: तानि परिचिनुत तेषां प्रशंसां कुरुत तेभ्यः शिक्षाम् आप्नोतु शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अंगं भवतु। आगामी मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर, यही आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अब नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बगिया के फूल।

0: जय हिंद बच्चों।
1: ममता कैसी हो?
0: बहुत अच्छी।
1: भाई तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम आज बहुत खुश हो। भाई क्या बात है, आज तुम बड़ी खुश खुश नजर आ रही हो।
0: खुश तो होना ही है। अब जो मौसम ने थोड़ी करवट ली है, थोड़ी सी मतलब ठंडक महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: ठंडक हो गई है, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है। देखो ना ममता, जो नौ तपाई की हम बात कर रहे थे, बहुत गर्मी थी,
0: बहुत
1: बहुत
0: गर्मी थी।
1: हाँ। लेकिन ममता एक बात हम फिर कहेंगे कि नौ तपा भी जरूरी था हमारी प्रकृति के लिए, धूप भी एक वरदान है। लेकिन भगवान ने हमें थोड़ा सा सरस कर दिया, बारिश हो गई। लेकिन ममता तुम्हें पता है, रात को हर मैसेज बार बार अलर्ट हो रहा था सरकार की तरफ से कि भाई ध्यान रखें इस जगह इतनी तेज
0: बारिश और
1: बारिश।
0: आंधी।
1: हाँ तो भाई हम ये भी कहेंगे कि देखो मौसम अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो प्लीज़ अगर आप बाहर निकल रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिए, और यदि आप घर में भी हो तो थोड़ा सावधान रहें। देखो ममता, अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखा बहुत सारे टूटे हुए
0: पेड़
1: पेड़।
0: की डालियां बहुत सारी टूटी हुई थी रास्तों
1: हाँ
0: में, मैंने भी देखा।
1: तो देखो
0: तो
1: ममता, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं।
0: हाँ, तो
1: भाई
0: नुकसान हो सकता है।
1: बिल्कुल ना, तो आप खड़े हो ना आप अपना व्हीकल खड़ा करें, खुले में आप खड़े रहें हो, ठीक है माना आप बारिश से भीगोगे, लेकिन दूसरी आपदाएं आपको परेशान नहीं करेगी। तो प्लीज़ आप खुले में रहें, अपनी गाड़ी को भी खुले में खड़ा करें। और वैसे तो मैं ये कहूँगी कि जब आपको पता है कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बारिश का हो रहा है, अंधड़
0: तो
1: का हो
0: घर
1: रहा
0: से
1: है,
0: बाहर निकले ही
1: निकले ही
0: नहीं।
1: नहीं, है ना?
0: अपनी अपना सुरक्षा अपने हाथ होती है, और आपको अपना पूरा ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और ममता, जब हम ध्यान की बात करें तो हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि भाई कल हम अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस मनाएंगे। ममता दूध का नाम लेती कुछ बच्चे बहुत खुश हो जाते, उन्हें लगता है कि
0: बिल्कुल।
1: मम्मी आज केसर का बादाम वाला दूध पिलाएगी, मम्मी आज फ्लेवर्ड मिल्क,
0: शेक।
1: हाँ शेक पिलाएगी। लेकिन ममता कुछ बच्चे होते हैं जो नाक मुंह भी सिकोड़ते हैं, दूध नहीं नहीं हमें नहीं पसंद है, हम नहीं पियेंगे। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए?
0: बिल्कुल भी नहीं बच्चों, आपके लिए दूध तो सबसे ज़्यादा वरदान है, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, और कैल्शियम होता है। उसके बाद में B12 भी सबसे ज़्यादा दूध में माना जाता है, और पोटेशियम और ज़रूरी पोषक तत्व भी दूध में होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं, और दिमाग के विकास में मदद भी करते
1: भाई
0: हैं।
1: कुल मिला के हम कह
0: तो
1: सकते हैं ममता कि दूध एक संपूर्ण आहार है,
0: आहार है।
1: एक कंप्लीट फूड है। यदि आप रोज सुबह और शाम दूध का सेवन करते हो तो आप में फिर विटामिन मिनरल की कभी कमी नहीं होगी, एनर्जी लेवल आपका बढ़ा रहेगा, आपकी शारीरिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। तो हम आपसे कहेंगे दूध का सेवन करें, और हम ये भी कहेंगे कि अगर आपको केवल दूध अच्छा नहीं

0: देखता हूँ तो उसको दही फॉर्म में, बटर, मिल्क, घी, बहुत
1: हम्म,
0: सारी चीज़ें हैं ममता, वो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हमने अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस के बारे में बता दी। और अब बच्चों को सुनाते हैं प्यारा सा गीत।

0: तेरा मुझसे ही है पहले का नाता कोई, बहुत अच्छा गाना सुना है माला दीदी ने। और हम जानते हैं कि हमारे सारे बच्चों को हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, संडे है और हम चाहते हैं संडे को बिल्कुल फन का डे बना दे, बच्चे खूब मौज मस्ती करें। और देखो ना ममता, अभी जो समय चल रहा है वो छुट्टियों का चल रहा है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे बिल्कुल तनाव से दूर रहें, मौज मस्ती करें और अपने कहना चाहिए फिजिकल ग्रोथ पर ध्यान दें। तो ममता, अब बच्चों को सुनवाते हैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, हमने बच्चों से बातचीत की है, तो बच्चों की जो बातचीत हुई है हमसे।

0: सुनवाएं बच्चों को?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं।
2: जय हिंद बच्चों।
3: जय हिंद दीदी।
0: ममता आज तो हमारी बगिया में प्यारी प्यारी दो बेटियां आई हैं, बहुत सारी बातें करेंगे।
4: बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी नन्ही नन्ही गुड़िया है और हमसे बहुत सारी बातें करना चाहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे।
5: मेरा नाम है विशाखा चौबीसा।
0: विशाखा कौन सी क्लास में पढ़ती
5: है? मैं अभी टेंथ में हूँ।
0: टेंथ में आई हूँ, नाइन्थ पास किया।
4: और विशाखा के पास में कौन बैठा है?
6: मेरा नाम मुस्कान है।
4: मुस्कान कौन सी कक्षा में हूँ?
6: मैं सेवेंथ क्लास में हूँ।
4: अरे वाह,
0: सिक्स पास की है, सेवेंथ क्लास में आई हूँ। कैसा लग रहा है नई क्लास में आके?
6: बहुत अच्छा।
0: अपने दोस्त वही हैं या फिर आपने नई स्कूल में कुछ एडमिशन लिया?
6: वही है।
0: तो फिर तो बहुत अच्छा लगता है। पुराने साथी, पुराने स्कूल, पुराने दोस्त, बहुत मजा आता है।
4: बहुत अच्छा लगता है जब नई क्लास में प्रमोशन हो जाता है ना। जब आप बड़ी क्लास में आते हो तो आपका ओहदा भी बढ़ जाता है और अंदर से ऐसी भावना आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। बड़े हो गए और बड़ी कक्षा में आ गए।
0: तो विशाखा, हम आपसे बात करेंगे कि आपको मतलब खाने में क्या पसंद है?
5: खाने में मेरे को राजस्थानी डिश ज्यादा पसंद है, जैसे दाल बाटी चूरमा।
4: अरे वाह,
0: बहुत अच्छी डिश।
4: बहुत अच्छा है,
0: घी वाली भाई। ताकतवर डिश है।
4: हाँ, देसी खाना है और हमारा भी फेवरेट है।
0: बिल्कुल मजबूती का खाना है। और विशाखा के पास में
4: मुस्कान बैठी है।
0: मुस्कान से भी जानना चाहेंगे, मुस्कान आपको क्या पसंद है खाने में?
6: मुझे खाने में घर का खाना पसंद
0: है। घर के खाना तो सभी को पसंद होता है और घर का ही खाना खाना चाहिए, लेकिन घर के खाने में आपको क्या पसंद है?
4: कौन सी सब्जी है जो मुस्कान को बहुत ज्यादा पसंद है?
6: मटर पनीर।
0: मटर पनीर।
4: अरे वाह,
0: अच्छा अच्छा। मम्मी बनाती है?
6: यस मैम।
0: और दाल बाटी भी मम्मी बनाती है? तो फिर कब आए हम आपके घर?
5: बिल्कुल, आप कल आ जाओ।
0: कल आ जाए? अरे मम्मी से पूछ लो। मम्मी से पूछ लो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम कल आ जाएंगे और मम्मी नाराज हो जाएंगी?
5: नहीं, नहीं,
4: क्योंकि अभी गर्मी बहुत है विशाखा, और गर्मी में जब किचन में काम करती है ना लेडीज, तो उनको बहुत पसीना होता है।
0: पसीना आता है, लेकिन ममता हमारे राजस्थान की रिवाज है कि मेहमानों के आने पर उनका बहुत स्वागत किया जाता है,
4: बहुत किया जाता है।
0: अच्छा विशाखा, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है?
5: मेरे को इंग्लिश।
0: इंग्लिश सबसे ज्यादा पसंद है, क्यों?
5: इंग्लिश में लाइक मेरी जो स्पीच है ना, वो बहुत अच्छी है। जैसे मैं कोई से भी टॉपिक पे अच्छे से उसका
4: बोल लेती हूं।
0: गुड। और मुस्कान को?
6: मुझे मैथ्स पसंद।
0: मैथ्स पसंद है, जानते हो मैथ्स क्यों पसंद होती है बच्चों को?
4: स्कोरिंग होती है और मैथ्स में पूरे नंबर आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और बताए माला, जब भी हम मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, कोई सम्स वगैरह करते हैं, तो हमको नींद नहीं आती है। हम एनर्जेटिक रहते हैं और हमेशा मैथ्स का जब भी हम सॉल्यूशन, जितना ज्यादा हम मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं, उतने ज्यादा हम मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सबको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बच्चों की मैथ कमजोर होती है तो मैथ के नाम से डरते भी हैं ममता। है ना?
4: तो कोई भी सब्जेक्ट से हमको घबराना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं चाहिए।
4: अच्छा, और कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको लगता है ना बच्चों की अगर हमारा वीक है सब्जेक्ट, तो उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा।
0: बिल्कुल। अच्छा विशाखा, आपका रूटीन क्या रहता है छुट्टियों का?
5: वेकेशंस में तो अभी हम एंजॉय करते हैं हम सिस्टर्स, तो ऐसे उठते हैं सुबह मॉर्निंग में 2-10 बजे तक, और फिर वही रूटीन करते हैं, ब्रश करना, बाथ लेना, और उसके बाद तो अभी हम खेलने जाते हैं बाहर बैडमिंटन गार्डन में हम तीनों सिस्टर्स, और ताकि फिजिकल एक्टिविटीज में भी थोड़ा इन्वॉल्व रहे पूरे वेकेशन में, और फिर थोड़ा अभी हॉलीडे होमवर्क दिया है तो उसको भी थोड़ा करना है, पड़ता है।
4: मतलब पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी का भी पूरा ध्यान रखते हैं, और खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखते हैं।
0: बिल्कुल, फुल टू मस्ती चल रही है भाई। अभी एग्जाम से हम फ्री हो गए हैं, छुट्टियां हमारी चल रही है, किसी बात का हमें तनाव नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई का लोड नहीं है। भाई यही समय होता है ममता बच्चों के पास कि वो एंजॉय कर सके। पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल तनाव भी रहता है, मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मेरे एग्जाम में रिजल्ट क्या होगा, लेकिन छुट्टियां उनको मस्ती देती है कि सारे तनाव से दूर बिल्कुल अपने लिए जी सके, अपने लिए मौज मस्ती कर सके, अपने मन पसंदीदा खाना खा सके, मन पसंदीदा जगह जा सके, दादी नानी के घर जा सके।
4: बहुत अच्छा लगता है घूमना, तो घूमना किसे पसंद नहीं है। और फिर विशाखा, जब आप बता रहे हैं कि आप पूरा दिन का ऐसा रूटीन होता है आपका छुट्टियों का, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी कोई हॉबी, मतलब जो आपकी एजुकेशन है उससे अलग कुछ आप करते हैं?
5: हाँ, जैसे डांसिंग, सिंगिंग।

0: अभी जो छुट्टियों में अभी ड्राइंग सीख रही हूँ मैं, जैसे मैं इतनी वो नहीं हूँ ड्राइंग में, मेरी दोनों सिस्टर से मैं थोड़ा वो स्किल्स लेती हूँ। हाँ, तो अभी मैं अपनी ड्राइंग वाली हॉबी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ।
1: अच्छा, बहुत अच्छा बात है कि सिंगिंग भी सीखा है, डांसिंग भी सीखा है और अब ड्राइंग में भी वो थोड़ा
2: सिखा रही है। बहुत अच्छी बात है। देखो ममता सिंगिंग भी सीख रही है और सिंगिंग भी करती है, तो क्यों ना एक प्यारा सा कुछ सुन ले।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, विशाखा से सुनते हैं हम प्यारा सा गीत।
0: ए वतन वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन,

0: मेरे वतन।
1: बहुत ही प्यारा गीत सुनाया।
0: ए
1: और
0: वतन मेरे वतन,
1: वतन
0: बहुत अच्छा लगा हमको।
1: अभिषाका भाई, सिंगिंग डांसिंग ये तो आपकी हॉबीज है, आप मम्मी को भी घर में कुछ मदद करती हो, काम
0: हाँ,
1: करवाती हो?
0: संडे, जैसे संडे को और वेकेशंस में
1: क्या करती हो?
0: मॉपिंग करना और छोटा मोटा ऐसे ऑर्गेनाइज कर देना कुछ भी
1: बहुत
0: ऐसे।
1: अच्छी बात है भाई, बेटियां माँ की दोस्त होती है, माँ का सहारा होती है, और हमें मदद करवानी चाहिए क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मम्मी भी सारा दिन घर का काम करती है, थक जाती है ना।
0: और फिर जब हम हमारा काम करते हैं ना, तो हम आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं ना। हर समय जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा हमको सहयोग करें, हमेशा अवेलेबल रहे, है ना। तो बहुत सारे काम होते हैं जो हम धीरे धीरे सीखते हैं। छुट्टियों में जब हम काम करते हैं तो वही हम सीखते भी हैं और उसमें होशियार भी हो जाते हैं। तो सबको अपना काम करना चाहिए और मम्मी पापा की भी हेल्प करनी चाहिए।
1: अब ममता मुस्कान से भी कुछ जानना चाहेंगे। मुस्कान, आप कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ, कि आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है?
0: मुझे, मेरी हॉबी तो ये, मुझे डांसिंग और, है
1: हाँ,
0: ना, ड्राइंग में इंटरेस्ट है
1: अरे वाह,
0: और बैडमिंटन।
1: बैडमिंटन खेलती हो।

0: हम पुलिस वालों को यूं ही थोड़ी सलाम करते हैं भाई, वो हमारी सुरक्षा में
1: हमेशा तत्पर रहते
0: हैं।
2: इसीलिए हमें बहुत प्राउड है कि मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट
0: में। और कहते भी है ना ममता, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय।
1: बहुत अच्छी बात मुस्कान ने भी बताई हमको कि वो मतलब पढ़ाई के साथ में भी बहुत सारी उसकी हॉबी है, उसकी भी ड्राइंग में रुचि है, संगीत में रुचि है। और मुस्कान आप अभी बता रहे थे कि आपको गणित बहुत पसंद है ना, गणित विषय अच्छा लगता है, तो के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लोगी, क्या बनना चाहती हो?
3: मुझे डॉक्टर बनना है और मैं साइंस बायो लूंगी पीसीएम भी।
1: अरे वाह।
0: और विशाखा आप क्या बनना चाहती हो?
2: मेरा अभी तक तो डॉक्टर बनने का है, पर अभी जैसे मैं 10th में हूँ तो अब जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करूंगी।
0: नहीं तो रिजल्ट तो आपका अच्छा ही आएगा अगर आप शुरू से अगर आपने सोच लिया,
1: करते हो।
0: हाँ, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे ये बनना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि आपको दृढ़ निश्चय से अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान फोकस करना होगा, आपको खूब पढ़ना होगा।
1: और बच्चों एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होता है ना, हमको सतत प्रयास करना होगा उस तरफ। हमको हमारा जो रूटीन है, हमारा जो रुझान है, वो हमको पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करना होगा। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई करना है ना। और

0: जो रूटीन है, हमारा जो रुझान है, वो हमको पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करना होगा। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई करना है, है ना। और थोड़ी देर मतलब हम दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हमारा व्यायाम कर सकते हैं, हम कोई गेम खेलना चाहते हैं तो गेम खेल सकते हैं, पर पढ़ाई पर ही हमारा मेन फोकस होना चाहिए।
1: बिल्कुल, पढ़ाई से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे जो सपने हैं वो हमारी पढ़ाई पूरा कर सकती है। मुस्कान से भी कुछ जानना चाहेंगे। मुस्कान, आप हमारे उदयपुर राइट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
2: उदयपुर बहुत अच्छी सिटी है और मुझे उदयपुर में रहना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे फतेह सागर है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोरिंग के लिए भी है। और उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स और हिंदी में झीलों की नगरी कहा जाता है। और उदयपुर बहुत सुंदर सिटी है, ये राजस्थान का एक पार्ट।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात हमको मुस्कान ने बताई
1: है। भाई उनका इशारा है कि लेक सिटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ के यहाँ के बासिंदे, हमें लेक सिटी की साफ सफाई
0: और हमको गर्व होना चाहिए कि हम उदयपुर के निवासी हैं।
1: बिल्कुल, हमें यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा,
0: है ना मुस्कान?
2: यस।
0: आप कभी फतेह सागर के पास में जा रही हो और कहीं आप घूमने गई हो, अगर वहां पर आपके पास कैरी बैग नहीं है और आपने कुछ खाया है या घर से कुछ लेके गए हो, और वो जो हम खाने के बाद में जो हमारा वेस्ट होता है, तो उसका आप क्या करोगे?
2: उसका लाइक लेक में तो नहीं डालूंगी और कहीं पे भी नहीं। जैसे पापा कुछ दिलाते हैं तो फिर हम हमारे पास ही रखते हैं, फिर आगे अगर डस्टबिन और ऐसी कुछ जगह होती है तो हम वहां पर डालते हैं।
0: अरे वाह, बहुत समझदार है।
1: डैपर राइट्स कहना चाहेंगे, इन बच्चों से भी कहना चाहेंगे जो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप जो भी बिल्कुल निश्चित स्थान पर डालें, और अगर आपको
0: डस्टबिन
1: नहीं मिल रही है तो आप अपने साथ कैरी करें, घर ले जाके अपने घर के डस्टबिन में डालें। विशाखा से भी जानना चाहेंगे, उदयपुर राइट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: उदयपुर राइट्स को, जैसे हमारा उदयपुर एजुकेशन लेवल में बहुत अच्छा है, तो ये दो की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड पर्यावरण के लिए सुरक्षा और सेल्फ डिफेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेट द गर्ल्स एंड सेव द गर्ल्स। तो अगर हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो हमारी बेटियां बहुत आगे जाएगी, और बेटियां जब आगे जाती है तो समाज बहुत आगे बढ़ जाता है।
1: बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी बेटियों को हम पढ़ाएं।
0: बेटी और बेटे में कभी भी आप अंतर नहीं करें, बेटियों को पूरा अधिकार है आगे बढ़ने का, और आजकल माला हर क्षेत्र में बेटियां सबसे आगे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो उसने कहा है कि बहुत अच्छी बात की सेल्फ डिफेंस की हमारी बेटियों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो आत्म सुरक्षा के गुर सीखे, आत्म सुरक्षा को पहचाने जाने। पेरेंट्स से भी कहना चाहेंगे अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उन्हें जरूर, जब कभी वो अपनी किसी परेशानी में हो तो अपनी मदद खुद
0: कर सके।
1: तो ममता, बहुत सारी बातें कर ली,
0: बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है, बहुत अच्छा लगा है हमको विशाखा और मुस्कान से, बहुत अच्छी अच्छी बात। आप हमारे साथ आए और हमसे अच्छी अच्छी बातें करी, इसके लिए आपका धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस।
0: तो बच्चों, अभी आप सुन रहे थे ओवी रिकॉर्डिंग, बच्चों से बातचीत, और अब घड़ी हमें इजाजत नहीं दे रही है।
1: लेकिन देखो ममता, हमारा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है कि हम बच्चों को छोड़ के जाएं, क्योंकि बच्चों से बात करने का समय हमें थोड़ा ही मिलता है, लेकिन वो थोड़ा समय में हमें लगता है हम सारी बात कह डालें। लेकिन बच्चों, थोड़े से समय में हम अपने सारी बात आपसे नहीं कर सकते। अगले दिन यानी
0: अगले सप्ताह,
1: आज ही के दिन, आज ही के समय फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
0: जय हिंद बच्चों।

अभी नन्हे मुन्ने बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बगिया के फूल, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में, दिल का रिश्ता फिल्म से, संगीत नदीम श्रवण का।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा,
0: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मस्ती फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं तेरे नाम फिल्म से, आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 1 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की 134वीं कड़ी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेज धूप और गर्म हवाओं के इस मौसम में अपना ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए सरकारी विभागों ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसे नहीं भूलें।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आम की विभिन्न किस्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गर्मियों के आते ही आम हर घर में चर्चा का विषय होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश के परंपरागत पेय पदार्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना झलकती है। राजस्थान में छाछ हर खाने की साथी होती है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में देश की उपलब्धि से की। उन्होंने 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूरकी से भी बातचीत की। अपनी हाल ही की नीदरलैंड यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां आयोजित एक समारोह में चोला काल की ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। केरलम में चलने वाले स्विमिंग क्लब के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमें बड़ी सीख देता है कि सेवा करने के लिए अच्छा इरादा और लगातार प्रयास जरूरी है।
2: साजिद वलासेरी जी का जीवन हमें बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया।

0: क्लासेस।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर युवाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इसके बाद उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान कल से शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक महीने के इस राष्ट्रीय अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जन जागरूकता से जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि ये अभियान उर्वरकों के प्रयोग और मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी और गांवों को सीधे योजनाओं का लाभ दिए जाने पर केंद्रित होगा। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है, वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई है। उदयपुर जिले में दो स्थानों पर खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई कर 18,000 लीटर मिलावटी घी जब्त किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभ मंगला ने बताया कि ये मिलावटी घी टैंकों और विभिन्न कंटेनरों में पाया गया। कार्रवाई के दौरान फूड कलर की बोतलें भी बरामद की गई। टीम ने सवीना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान से मिलावटी घी और अन्य दुग्ध उत्पादों का करीब 42,000 किलो से अधिक का स्टॉक भी पकड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज, वहीं 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट बताया है। मौसम का ये बदलाव 3 जून तक बना रह सकता है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अलवर सहित कुछ स्थानों पर धूल भरी तेज आंधी चली। इससे दिन में ही रात सा अंधेरा छा गया। कई जगह आसमान धूल के गुबार से ढक गया, जिससे कुछ मीटर दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया। जयपुर में भी कल शाम आंधी चली, वहीं जोबनेर इलाके में झमाझम बरसात के साथ ओले गिरे। आंधी बारिश से तापमान में 9 से 12 डिग्री तक की गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: मुस्कुराहटें खिलती हैं जहाँ, अपनों के साथ वो घर हमेशा महफूज रहता है हर रात। परिवार की दुआएं ढाल बन जाती है अक्सर, खुश नसीब है वो जिनके सर पर होता है ये हाथ। महिला जगत सुनने
1: चारा समझ में आ रहा है।
0: बिल्कुल
1: मुझे ऐसा लग रहा है मतलब कि तुम कुछ पारिवारिक
0: बिल्कुल
1: पॉइंट्स पे बात करना चाह रही हो।
0: प्रीति बिल्कुल सही बात बोली है कि पारिवारिक बात की अगर हम बात करें कि जो पारिवारिक निर्णय होते हैं उसमें सामूहिक भागीदारी किस तरह से निभानी चाहिए, तो अगर हम बात करें कि परिवार केवल खून के रिश्तों का नाम ही नहीं होता बल्कि यह प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का संगम होता है, तो परिवार में हर सदस्य की अपनी भूमिका और महत्व होता है जब परिवार में कोई निर्णय भी लिया जाता है।
1: बिल्कुल। वैसे एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी पूनम, कि वक्त बदल चुका है। पहले एक समय था जब कहते हैं ना कि पितृसत्तात्मक
0: बिल्कुल
1: सत्ता हुआ करती थी, तो उसके अंदर क्या होता था कि घर में जो फादर ने कह दिया है, जो ग्रैंडफादर ने कह दिया है, बस वो ही चलेगा। किसी की राय कोई मायने नहीं रखती थी और सबको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। किंतु आज सखियों हम देखते हैं कि समय बदल चुका है और समय के अनुसार जो है, मुझे लगता है और मैंने देखा भी है कई परिवारों के अंदर, कि हर एक व्यक्ति की राय को बहुत महत्व दिया जाता है।
0: बिल्कुल। और हम देखते हैं कि जब सभी की राय भी ली जाती है तो वह
1: हाँ
0: हर सदस्य को परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है।

0: करता है और यह भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करता है।
1: सही भी है पूनम। देखा जाए तो परिवार से जुड़े बहुत सारे मुद्दे होते हैं और उनके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लेने की जरूरत पड़ती है, चाहे हम परिवार में किसी के विवाह की बात करें, चाहे बच्चों की शिक्षा की बात करें, या स्वास्थ्य, या किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय अगर हमें लेना होता है तो सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं बल्कि कहते हैं ना कि अपने जो बुजुर्ग होते हैं या आस पड़ोस के बुजुर्ग होते हैं, हम उन लोगों को भी अपना समझ करके उनसे भी राय लेते हैं तो वे भी अपना राय और सहयोग देता है, जो कि हमें बिल्कुल कहते कि उचित निर्णय लेने में मदद करता है।
0: जैसा कि प्रीति अभी बोला कि बच्चों, महिला और बुजुर्गों की राय शामिल करने से वो सशक्त भी महसूस होते हैं और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और अगर हम बात करें बच्चों को पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, तो उनके मानसिक विकास के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और उनकी उम्र और समझ के अनुसार छोटी जिम्मेदारियां देकर उन्हें बहुत महत्वपूर्ण महसूस कराया जा सकता है। जैसे कि परिवार में किसी आयोजन या छुट्टी की योजना में बच्चों की राय लेना चाहिए कि हमें कहाँ, उनको कहाँ घूमने जाना है, या वो छुट्टी के दिन क्या करना चाह रहे हैं। इस तरह की बात से उनको लगेगा कि हाँ चलो हमसे पूछ रहे हैं और हमसे पूछ के हम कहीं जा रहे हैं पेरेंट्स। तो इस तरह की जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उनको भी थोड़ा सा फील होगा कि हाँ हम लोग इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता फील कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही है। साथ ही साथ सखियों, हम लोग जो है जनरली तो क्या है कि सभी लोग व्यस्त होते हैं पूनम, मैंने देखा है, लेकिन फिर भी जो है हम पूरे एक वीक के अंदर जो है एक बार तो ऐसा हो सकता है कि कभी कोई वक्त ऐसा निकालें जब हम सभी लोग एक साथ में बैठे परिवार के सदस्य, और उसके अंदर जो है सभी से किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है अपने विचार खुलकर व्यक्त करने को कहें कि कौन क्या चाहता है, है ना। तो उससे क्या होगा कि सबको लगेगा कि यार हमको भी इम्पोर्टेंस मिल रही है, एक तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और स्पेशली जो महिलाएं जो घर की बहुएं होती हैं ना, मैंने देखा कई बार नहीं बोल पाती हैं और उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही होती है जबकि उसका समाधान बहुत छोटा सा होता है, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तो इस तरह की जो है एक छोटी सी कहते हैं ना बैठक अपनी फैमिली के अंदर हमको रखनी चाहिए, जिसके अंदर सभी लोगों को खुल करके बात करनी चाहिए किसी भी विषय पर जो है। अगर हम एक साथ बैठ करके निर्णय लेंगे तो सभी को लगेगा कि हाँ यार मुझे भी जो है सम्मान मिल रहा है।
0: बिल्कुल। और साथ में अगर जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बेटे बहू होते हैं और कई बार जो डिस्प्यूट होता है ना कि ये कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी पहले ही इस तरह से बैठक में आप डिसाइड कर लें कि चलो सुबह का खाना कौन बनाएगा, शाम का कौन बनाएगा। ऐसे छोटे छोटे से जो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जिम्मेदारी का बंटवारा होना चाहिए जिससे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और पारिवारिक जो भी निर्णय हो वो सामूहिक तरह से आप ले सकते हैं।
1: सही है। और निर्णय लेने से पहले जो है जिन जिन ने जो जो कहा है उन सभी की बातों के ऊपर जो है हमें चर्चा करनी चाहिए आपस में, और साथ ही देखना चाहिए कि उससे क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और कहाँ नुकसान में। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, या जो हमारे घर का मुखिया है उसको जो न्यू जो आजकल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे, तो उसके बारे में नहीं पता होता है या क्या क्या जो फ़ायदेमंद चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में। तो हम लोग जो हैं जब साथ में बैठ करके बात करेंगे तो हमें फ़ायदा और नुकसान भी समझ में आएगा और एक बिल्कुल सही निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच सकते हैं।
0: और साथ में अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें तो बिल्कुल जो स्पेशल चीज़ होती है कि कोई भी डिसीजन लेते हैं ना दोनों का जॉइंट होना चाहिए, कि चाहे आप कोई घर खरीद रहे हो, घर बदल रहे हो, या आपके इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, अगर निवेश की बात हो गई, या कोई करियर चूज कर रहे हो, तो आप मिलजुल के अगर करते हैं तो शायद आप दोनों में भी कभी मनमुटाव नहीं होगा और जो निर्णय होगा वो सामूहिक रूप से होगा।
1: बिल्कुल। तो और साथ में एक चीज यहाँ बहुत ध्यान रखने की होती है पूनम, कि हमारी फैमिली के अंदर जो कुछ भी हम डिस्कशन करते हैं और जो कुछ बातचीत होती है उसके अंदर कुछ बातें ऐसी होती है जो परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो उसका जरूर से ध्यान रखें कि हमने अपनी फैमिली के अंदर क्या डिसीजन किए हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। इसी भूमिका से या इसी भावना से जो है हम अपनी फैमिली को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं,
0: और इसी चीज से परिवार को तो मजबूत बनाता है बल्कि रिश्तों में विश्वास और आपसी सम्मान को भी गहरा करता है। और इसलिए हर परिवार को यह प्रयास करना चाहिए कि किसी भी निर्णय में सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो, और इससे परिवार में न केवल सामंजस्य बना रहेगा बल्कि आदर्श समाज के निर्माण की दिशा में भी योगदान देगा, और उससे बच्चे भी आपसे सीखेंगे और आगे भी उस तरह से उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, है ना, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो सभी को जो है बराबर जो है सम्मान दें, सभी की राय को जो है महत्व दें, ऐसे में सभी को कहते हैं ना मन की खुशी मिलेगी जिससे उसे फैमिली के अंदर रहना और भी अच्छा लगने लगेगा। मैं यहाँ कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी पूनम। रिश्तों की डोर से बंधा है परिवार, रिश्तों की डोर से बंधा है परिवार, सुख दुख में देता है साथ ये हर बार। खुशियों का सागर प्यार का किनारा, खुशियों का सागर प्यार का किनारा, इसके बिना

0: जीवन अधूरा हमारा।
1: बिल्कुल, और हर फैसले में सबकी भागीदारी तो बढ़ाती है परिवार की समझदारी। सबकी राय लेकर जो कदम बढ़ाओगे तो ज़िंदगी में कभी ना हार पाओगे। तो
0: बहुत ही
1: श्रोताओं बहनों, अब वक्त हो चुका है आपको प्यारा सा गीत सुनाने का और उसके बाद कुछ संदेश।

0: श्रोताओं बहनों, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, और गीत सुनने के बाद अब हम अपने अगले विषय पर चलते हैं। और आज हम बात करेंगे कि आज जो दिन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि अगर हम देखते हैं कि लोगों को तंबाकू से सेवन जो मतलब जो भी लोग तंबाकू के सेवन से होने वाले जानलेवा नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए जो हम हमेशा से बोलते हुए आते हैं, और कहीं भी हम देखते हैं कि लाखों लोग ऐसे बहुत सारा जो संकट है उसको याद करने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि सालाना 80 लाख से अधिक लोगों की जान भी जोखिम पे आ जाती है, और ये जागरूकता अभियान नहीं बल्कि ये इस बात की याद दिलाता है कि तंबाकू का सेवन आज भी दुनिया भर में मृत्यु के सबसे रोके जाने वाले कारणों में से एक है। और अगर हम बात करें 2026 में जब हम इस महत्वपूर्ण दिन को मना रहे हैं, तो जो खास करके संदेश है वो है तंबाकू छोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है, तंबाकू के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में विज्ञान क्या कहता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक इसे कैसे छोड़ सकता है, यही हम आज बात करेंगे। तो इसका जो विषय है वो है
1: आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। वैसे भी हमने देखा है पूरम कि आजकल जगह जगह जो यंगस्टर्स

0: हैं हमारे, उनको भी हम देखते हैं कहीं जगह पर वो खड़े हुए जो है हमें तंबाकू वगैरह का सेवन करते हुए नजर आते हैं, और ये स्टेटस सिंबल समझा जाता है आजकल तो
1: बिल्कुल
0: बोलो, है ना। जबकि अगर इसके बारे में सभी को अगर पता लगेगा कि किस तरह की ये चीज़ है और इससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, तो शायद वो कहते हैं ना इसको छोड़ने की सोचें भी सही।
1: हाँ
0: किंतु जो है लोगों के अंदर जो इस एक को देख करके दूसरे के अंदर जो ये भावना चलती जा रही है, और जो इस कहते हैं कि बहुत तीव्र गति से जब ये आगे बढ़ रहा है तंबाकू का उपयोग करना, तो आज के दिन जो है पूरी दुनिया भर के अंदर जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जो है लोगों को बताने के लिए 31 मई 1987 से जो है इसे प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। एक तरफ जहां लोग, तुम देखा है पूनम हमने, कि तरक्की और विकास के नए आयामों को छू रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में होती जा रही है, जो कि एक बहुत ही गंभीर कहना चाहिए मुद्दा है, क्योंकि तंबाकू के सेवन से न सिर्फ उनका शरीर खराब हो रहा है बल्कि हमारे देश का भविष्य भी अगर देखें तो खराब ही होता जा रहा है।
1: बिल्कुल। और अगर हम देखते हैं कि धूम्रपान जो भी करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो उनकी हृदय गति काफ़ी बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है,
0: हाँ
1: रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लेने लगती है, और इसी के मतलब इसी चीज़ों से कैंसर हो गया, हार्ट अटैक्स हो गए, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, या फिर अस्थमा, खांसी और स्वाद एवं गंध की अनुभूति में कमी महसूस होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इसके
0: बिल्कुल
1: बाद अगर हम स्ट्रोक का ख़तरा भी देखें तो वो भी इसी वजह से होता है।
0: हाँ
1: तो ऐसे जहरीले रसायनों के संपर्क में आने वाला जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हमें हमेशा अपने आप से दूर रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सखियों। तो आज के दिन जो है इस जगह जगह जगह पर कैंप लगाए जाते हैं और कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, और तंबाकू के हानिकारक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और भाषण भी देते हैं इसी के रिगार्डिंग हम लोग, ठीक है। विश्व तंबाकू दिवस एक जागरूकता अभियान नहीं बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमें हर बार ये याद दिलाता है कि तंबाकू के सेवन से आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान जा रही है। जो लोग तंबाकू के सेवन के आदि हो जाते हैं, या फिर जो लोग बीड़ी सिगरेट आदि पीना कहते हैं ना अपनी शान समझते हैं, जो हम बात कर रहे थे, ऐसे लोगों का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है और बहुत सारी जानलेवा बीमारियों की कहना से वो घिर जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो तंबाकू के सेवन को पूरी तरह से रोकने के लिए, लोगों को बढ़ावा देने के लिए जो है हर साल आज के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसके सदस्य राज्यों समेत गैर सरकारी और सरकारी संगठनों के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जैसा कि तुमने अभी बताया पूनम, के कैंसर से लेकर के पेट संबंधित कई बीमारियां, पेट के अल्सर, एसिडिटी, इंसोमेनिया, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, काफ़ी सारी जो है बीमारियां होने का हमें खतरा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल। तो तंबाकू छोड़ना आसान ही नहीं, बिल्कुल संभव भी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला टिप तो कि अपने ट्रिगर्स को पहचानें, उन स्थिति, भावना या दिनचर्या पर ध्यान दें कि आपको तंबाकू की तलब कब होती है, आप कब खाते हैं, या कई बार हम तनाव में होते हैं, अवसाद की स्थिति होती है, तो इस पैटर्न को आप पहचानें और उस चीज़ को आप मतलब दूर करने की कोशिश करें। इसके अलावा धूम्रपान की जगह आप सकारात्मक गतिविधियों को अपनाएं, उसी तरह से कि जैसे उदाहरण के लिए तनाव कम करने के लिए आप गहरी सांसें ले, जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, या सामाजिक परिस्थितियों में आत्मविश्वास से भी कई बार हम इस चीज़ों को करते हैं, तो आप बैठ के आपको जिसके साथ अच्छा लग रहा है बैठना, कि अपने फ्रेंड्स के साथ लग रहा है, फैमिली के साथ लग रहा है, उनके साथ बैठ के आप डिस्कशन करें, बातचीत करें, उससे भी आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं और टबैको आप नहीं खा खाएंगे।
0: बिल्कुल कहते हैं ना ईमानदारी और दृढ़ संकल्प अगर हम सोच लेते हैं तो सभी कुछ करना जो है संभव होता है। लेकिन फिर भी कई बार मैंने सुना है कि कुछ लोगों को कहते हैं एक वो बार बार तलब सी जिसको कहते हैं ना कि इच्छा होती है बार बार खाने की, तो ऐसे में जो है वो माउथ फ्रेशनर वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। और आजकल तो
1: बिल्कुल
0: इसके लिए जगह जगह संस्थाएं बन गई हैं जहाँ से जो है उनको तरीका दिया जाता है कि किस तरह से वे उसको छोड़ सकते हैं। आदत नहीं है अच्छी तू पहचान ले, जान लेवा है धूम्रपान ये बात जान ले, कैंसर नहीं केसर नहीं कैंसर का दम है दाने दाने में, ए मेरे दोस्त छोड़ ये शौक बात मान ले।
1: बिल्कुल। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आइए हम सभी तंबाकू और धूम्रपान जैसी हानिकारक आदतों से दूर रहने का संकल्प लें, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार और सुरक्षित भविष्य के लिए जागरूक बने, तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति प्रेरित भी करें।
0: बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी सी कहते हैं ना कि

0: लें।
1: बिल्कुल, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आइए हम सभी तंबाकू और धूम्रपान जैसी हानिकारक आदतों से दूर रहने का संकल्प लें, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार और सुरक्षित भविष्य के लिए जागरूक बने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति प्रेरित भी करें।
0: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी सी कहते हैं ना कि चर्चा हमने की है पूनम, और इसी के साथ चलते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: तो सखियों, बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने सुना है, और नशे तो नशे के प्रभाव जो हैं हमने सुन ही लिए कि बहुत अच्छे भी होते हैं, नशा भी अलग अलग तरह का होता है। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे थे, जैसा कि आज जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो अभी तक तो हमने जाना कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है पूनम कि जहाँ हम परिवार वाले हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे परिवार के अंदर भी इसका इफेक्ट आने लगता है। तो
5: बिल्कुल,
4: क्या क्या मतलब नकारात्मक प्रभाव हमारे परिवार पे हो सकते हैं और किस प्रकार इनसे बचा जा सकता है?
5: बिल्कुल, क्योंकि नशाखोरी सिर्फ नशे के आदि व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये पूरे परिवार पर असर डालता है। और जो कि प्रीति अभी तुमने कहा,
4: हाँ,
5: कि भावनात्मक, आर्थिक और आपसी संबंधों में तनाव तो पैदा होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने यही चीज़ डिस्कस की कि कोई दुख होता है, अवसाद होता है, इस तरह की चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें आपके पूरे परिवार पे भी इफ़ेक्ट करती है। कि अगर घर में कोई भी एक मेंबर इस तरह का नशा करता है, तो साथ में बच्चों पे भी असर पड़ेगा, चाहे घर के बुजुर्गों पर भी पड़ेगा।
4: कुल मिलाकर देखा जाए तो शारीरिक रूप से सोचें हम पूनम, चाहे आर्थिक रूप से देखने जाएंगे, चाहे भावनात्मक रूप से देखने जाएंगे, कुल मिलाकर ये हमारे घर के माहौल को खराब करता है, जिससे हमारे जो कहते हैं आपसी विश्वास भी खत्म होने लगता है।
5: बिल्कुल,
4: प्यार तो कम होता ही है, साथ ही साथ बिल्कुल झगड़ा फसाद की स्थिति पैदा हो जाती है।
5: सही है। तो हम अगर देखेंगे तो घर का शांत और खुशनुमा माहौल अगर लगातार तनाव और कलह में जो बदलता है, या परिवार के सदस्यों में, विशेषकर जीवन साथी में, डर और असुरक्षा की भावना हो जाती है, कई बार इस चीज से मारपीट, दुर्व्यवहार भी हो जाता है,
4: जिसको महिला हिंसा, माता पिता भी डरने लगते हैं, बच्चे वो देखते हैं ना अपने सन को, देखते हैं कि भाई वो नशा करके घर में आया है, और बच्चे बेचारे सहम के एक तरफ चले जाते हैं।
5: तो ये सारी चीज़ें जो होती है, तो बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है, वो पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी आती है।
4: बिल्कुल।
5: तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों के भविष्य पर भी असर डालती है। फिर अगर हम बात करें तो घर की कमाई का बड़ा हिस्सा इन सारी चीज़ों में चला जाता है, तो हम वित्तीय रूप से निवेश नहीं कर पाते, कहीं भी पैसा, थोड़ा सा भी पैसा आया तो इन बुरी लत पे वो लोग खर्च कर देते हैं, या फिर इसके बाद कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, तो उसके इलाज पे भी हम इस लत को छुड़ाने के लिए भी पैसा लगाते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे परिवार को इफ़ेक्ट करती है।
4: बिल्कुल, और साथ ही साथ जो है घर में जो है लगातार जो है टेंशन की स्थिति बनी रहती है सखियों।

0: गुटखा खाते हैं, तंबाकू मतलब शराब पीते हैं, ये सारी चीज़ों को छुड़वाने के लिए हम उनको पैसे देते रहते हैं। तो इन चीज़ों का क्या पैसे का कंट्रोल अपने पास रखें तो ये सारी चीज़ें भी छूटेगी मतलब। और दूसरा कि कुछ परिवार के सदस्य मिल के सब बैठ के उनको मतलब समझाए, कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें नहीं हों।
1: बिल्कुल, साथ ही साथ एक चीज़ और भी आती है कि समाज के अंदर भी जो है हमारी कहते हैं ना कि परिवार को एक शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो हम ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग थलग से हो गए हैं, है ना, कई बार क्या इंसल्टेड फील करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है शराब का जो या नशे का जो है प्रभाव बहुत ही नकारात्मक रहता है परिवार के लिए। तो कोशिश करें कि सबसे पहले जो है प्यार के साथ में जो है अपने परिवार के सदस्यों को समझाने की कोशिश करें अगर कभी इस प्रकार की किसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, है ना, उसके अलग अलग तरीके से जो है माता पिता भी जो हैं अपने बच्चे को समझा सकते हैं और इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और नशे की लत से बाहर निकलना मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। तो अपने नज़दीकी सरकारी या निजी नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहाँ मदद लें, परिवार के सदस्यों को कई बार काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग सेंटर पे ले जाएं।
1: हाँ,
0: और इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर हेल्पलाइन नंबर पे भी आप चाहें, टोल फ्री नंबर है जो ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर है 144456 और 15545 पर संपर्क करके मदद ले सकते हैं, वहाँ से आपको उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा।
1: बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी बातें हो चली हैं और वक्त हो चला है एक बहुत ही खूबसूरत से गीत का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमने सुना है सखियों, और साथ ही साथ जो है, जैसा कि पुनः बहुत तेज गर्मी हो रखी है और पूरा दिन जो है कूलर और एसी की हवा खाने के बाद हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना कुछ देर जो है खुली जगह पर बिताई जाए, और उसके लिए जनरली हम लोग जाते हैं या तो अपने टेरिस पर या फिर अपनी बालकनी पर। तो मैं चाहूँगी कि पुनम, आज जो है हम अपनी बालकनी की सजावट कैसे करें, इसके बारे में बात करें।
4: बिल्कुल, बालकनी की सजावट तो हम देख सकते हैं, हम कुछ ना कुछ कलरफुल दीवारें बना दिया, कुछ गमले लगा दिए, कुछ हैंगिंग चीज़ें लगा दी, अच्छी फैंसी लाइट्स लगा देते हैं हम लोग, और कई बार हम आर्टिफिशियल ग्रास मैट भी लगा देते हैं, वुडन डेकोरेशन कर लेते हैं, या छोटी छोटी टाइल्स में हम अपने हिसाब से भी कुछ डेकोरेटिव चीज़ें लगा देते हैं, उस तरह से भी हम अपनी बालकनी को सजा लेते हैं। किसी भी जगह को कोई ऐसी चीज़ से सजाया जा सकता है कि ऐसा महसूस हो कि हम बहुत अच्छा फील करें, हम पॉजिटिव फील करें।
3: बिल्कुल, साथ ही साथ जो है हम बालकनी के अंदर फर्श पर जो है आर्टिफिशियल ग्रास मैट लगा करके भी एक बहुत सुंदर सा गार्डन वाला लुक ले सकते हैं। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है सखियों, कि अगर आपकी बालकनी छोटी है तो उसके लिए फोल्डेबल कुर्सियों और छोटी टेबल का चुनाव करें, ताकि जगह जो है हमें खाली भी मिल सके।
4: बिल्कुल, और अगर आप पढ़ने या लिखने के शौकीन हैं तो आप वहाँ पे भी अपना स्टडी टेबल लगा के और अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग लिख सकते हैं, उस तरह से भी अपनी बालकनी का यूज़ कर सकते हैं और अपनी चाय और कॉफ़ी का चुस्किया ले सकते हैं।
3: बिल्कुल, लेकिन जहाँ तेज़ धूप आ रही है इस वक्त, तो उससे बचने के लिए जो है सखियों, बाँस या हल्के फैब्रिक के ब्लाइंड्स लगाएँ जो हवा और रोशनी को आने दें। तो खूबसूरत बालकनी का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह आपके मूड को बेहतर बनाती है।
4: बिल्कुल,
3: मांगी थी दुआ हमने रब से कि देना हमें दोस्त ऐसे जो अलग हों सबसे, रब ने मिला दिया हमें आपसे और कहा मत जुदा होना अब इनसे, ये अनमोल हैं सबसे।
4: तो इसी अनमोल रिश्ते को हम हमेशा निभाते आएंगे, और आप भी हमारा प्रोग्राम सुनते रहना। और अब

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिन संगीत।

दोस्तों, आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 2:01 हो चुके हैं, क्षमा चाहते हैं, दिन के 2:11 हो चुके हैं। और आइए कार्यक्रम विकास चर्चा के अंतर्गत आइए आपको जानकारी दें प्रधानमंत्री किसान स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में। तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सोइल हेल्थ कार्ड इस योजना को चलाया जा रहा है। और ये योजना मुख्य रूप से किसानों के स्वास्थ्य से नहीं बल्कि उनके खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य यानी कि सोइल हेल्थ से जुड़ी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी मिट्टी की उर्वरता की जानकारी देना है ताकि वे जरूरत के अनुसार ही उर्वरक और पोषक तत्वों का उपयोग कर सकें।

0: योजना की मुख्य बात करें तो इसकी थीम रखी गई है जो कि स्वस्थ धरा खेत हरा के नारे पर आधारित है। कार्ड में अगर आपको अधिक जानकारी दें तो इस कार्ड में कुल 12 मानदंड आपको मिलेंगे और इसी के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता का ब्यौरा होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक, आयरन, कॉपर आदि। फसल और खाद की सलाह, कार्ड में ये स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और खेत में अच्छी फसल के लिए किस उर्वरक या फिर खाद की कितनी मात्रा का उपयोग करना चाहिए। अवधि की बात करें तो सरकार द्वारा ये कार्ड हर साल 2 साल में अपडेट होता है। खर्च की बात करें तो ये जांच सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त या बहुत ही नाम मात्र शुल्क पर की जाती है। और अगर आप जानकारी चाहें कि इसके लिए आवेदन किस तरह किया जाए तो ऑनलाइन प्रक्रिया भी इसके अंतर्गत शामिल है। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके खुद आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया की बात करें तो आप अपने जिले की कृषि विभाग, स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक यानी कि ग्राम सेवक या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। वे आपके खेत से मिट्टी का नमूना लेकर लैब में भेजेंगे। अब बात करें आवश्यक दस्तावेज क्या इसमें आपको चाहिए होंगे, तो आधार कार्ड, खेत के दस्तावेज जैसे कि खसरा या खतौनी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। किसानों को मिलने वाले लाभ लागत में कमी, मिट्टी की जरूरत के हिसाब से उर्वरता डालने पर फिजूल खर्च से आपको बचाएगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, सही जानकारी होने से आपकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी, मिट्टी की सुरक्षा भी रहेगी और लंबे समय तक जमीन की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी। और आप सीधे आधिकारिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल पर विजिट करके इसकी और भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के विकास चर्चा कार्यक्रम में हमने आपको जानकारी दी प्रधानमंत्री किसान स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। आपको बता दें, आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। दिन के 2:15 होने को है और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं

0: की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी

0: जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रूपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा

0: क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला

0: नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर, यही आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम नानू भाई, राम राम।
1: राम राम भावना भाई सा, राम राम।
0: और कृषि जगत कार्यक्रम होने वाला हंगला किसान भाई ने भी अपनो
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा। देखो नानू भाई कार्यक्रम रो टेम व्यू और आपी भात भातरी जानकारी लेन आपने कार्यक्रम में आई गया। हाँ, और किसान भाई जाने हैं कि भाई भात भातरी जानकारी तो करावे गई। और लारे लारे देखो सा, दोपहर रो समय है, थोड़ो व्यायाम ले रहा है, आराम फरमाई रहा है, तो वर्ण में क्यों नहीं मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनावा सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो, जैसे आप खेती बाड़ी रे कार्यक्रम में आया हाँ कृषि जगत में, तो आज किसान भाई बहना होते, देखो किसान हरी बात में देखो आप जानकारी लेने आया कि किसान भाई जो खरीफ फसल है वन में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कई वे और कई प्रकार किसान भाई बहन अंडो लाभ ले सके।
0: सही बात है। देखो सा नानू भाई जटे बात कर रहे हाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य री, तो देखो सा भारत सरकार द्वारा किसाना ने बनारी फसल ने उचित मूल्य दिलावारे वास्ते निर्धारित कियो जावा वालों एक महत्वपूर्ण कृषि मूल्य है। और अंडो मुख्य उद्देश्य जो है किसाना ने फसलाओं जो है कम बाजार मूल्यों वेवा वाले नुकसानों बचानो है और हाथे हाथे कृषि उत्पादन ने बढ़ावो देनो है सा।
1: आपा सब जाना कि यदि बाजार में कणी फसल रो मूल्य जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्यों नीचे चलो जावे तब सरकार वणी फसल ने खरीदे है और किसाना ने वणारी उपज रो न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य प्राप्त वे ताकि वणारी जो फसला है वणों वणाने अच्छी आमद बही सके।
0: सही बात है। और नानू भाई जटे भारत एक कृषि प्रधान देश है, जटे बड़ी संख्या में लोग जो है हमारी आजीविका खेती बाड़ी पर निर्भर करें, मौसम प्राकृतिक आपदाएं और बाजारी अनिश्चितता के कारण किसान भाई जो है अक्सर आर्थिक जोखिमों रो उन्होंने सामनो करना पड़े। और ऐसी परिस्थिति में आप ही कहवा कि भाई जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसाना रे वास्ते सुरक्षा कवचो कार्य करो है नहीं सा।
1: बिल्कुल सर। और जड़े देखो खरीफ फसला री बात कर रहे हैं तो ये भी फसला है जड़ने देखो मानसून रे आवाऊँ पहला बार जून जुलाई में बोयो जावे
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: सितंबर और नवंबर बच्चे काटियो जावे और अनारी फसला री वृद्धि रे बात है वर्षा और गर्म जलवायु री आवश्यकता है। तो जटे आप खरीफ फसला री बात करें तो वंडी मुख्य फसला कसी कसी है सा।
0: देखो साण में धान चावल है, मक्का है, ज्वार बाजरा रागी तुअर जो अरहरी दाल है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली सोया

0: सोयाबीन, तिल और कपास और सूरजमुखी अण में आवे सा।
1: और अणा सब में जड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य रे निर्धारण रे अगर बात करा तो भारत सरकार द्वारा हर वर्ष अन्ने किदो जावे और न्यूनतम समर्थन मूल्य रे सिफारिश जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की दी जावे और आयोग उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य, किसाना री आय और उपभोक्ता रे हित में ध्यान में रखता लगा अपनी सिफारिश दे। अंडे केड़े अंडे माते जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य री अंतिम घोषणा जो है आर्थिक मामला री समिति जो है वनडे द्वारा कियो जावे है।
0: सही बात है। देखो सर, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य रे उद्देश्य री बात करा नानू भाई, तो देखो सर, सबों पहली बात करा किसाना ने वणारी फसल रो न्यूनतम लाभकारी मूल्य प्रदान करनो। आते आते देखो सर, किसान भाई ने कृषि उत्पादन रे वास्ते प्रोत्साहित भी करनो है। और जटे बात करा कि किसाना ने बाजार मूल्यों जो अगर कोई गिरावट वे रही है तो वणियों भी सुरक्षित राखनो है।
1: अंडे लारे लारे देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करनो, किसाना री आय ने बढ़ानो और वणारी आर्थिक स्थिति मजबूत करनो ताकि कृषि क्षेत्र में जो स्थिरता है वह वणी रही सके।
0: सही बात है। देखो सा नानू भाई, अणी विषय पे आपने किसान भाई ने और भी जानकारी दांगा, पर अगर आपको हो तो कार्यक्रम ने आगे सुचारू रूप चलावर वास्ते एक मन भावन राजस्थानी लोकगीत आपने कार्यक्रम के माध्यम किसान भाई ने सुनावा नहीं सर?
1: बिल्कुल सर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हाँ तो नानू भाई, जटे आप ही जानकारी दे रहा हा कि खरीफ फसला में न्यूनतम समर्थन मूल्य री। तो देखो सामने, पहली तो आप ही मन भावन राजस्थानी लोकगीत सुनायो और आप ही संदेश भी सुनायो। और देखो सर, जटे आप ही खरीफ फसला रे वास्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य रे महत्व री बात करा, तो सबों पहली बात करा किसाना री आय री सुरक्षा। आप ही जाना हाँ कि अगर बाजार में फसल रो मूल्य गिर जावे तो भी किसान अपनी उपज ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सके और आने वाला ने न्यूनतम आय सुनिश्चित वेगा सा।
3: बिल्कुल सा। और जड़े देखो, उत्पादन बढ़ाओ रही बात करा तो उत्पादन बढ़ाओ में भी यो सहायता प्रदान करे। क्योंकि यदि किसान ने उचित मूल्य मिलवा रो भरोसा मिल जाए तो वे अधिक उत्पादन करवाने प्रेरित हुए तो वे उन्होंने लाभ ने बढ़ावे है।
2: सही बात है। और हाथे हाथे जोखिम में कमी की बात करा कि खराब बाजार परिस्थितियां में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसाना ने आर्थिक नुकसानों बचावे सा। और खाद्य सुरक्षा की बात करा तो देखो सा, न्यूनतम समर्थन मूल्य रे माध्यमु सरकार जो है खाद्यान्न खरीद कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली रे लिए भंडारण करे है, जनु देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत वेवे सा।
3: बिल्कुल सा। और जटे देखो, अपन न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं तो खरीफ फसला री खरीद जो है मुख्य रूप देखो सरकारी एजेंसी द्वारा भी की जावे। धान री खरीद सबसे अधिक वे और खरीद प्रक्रिया में किसान अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्र पर ले जावे। जटे वणानी गुणवत्ता री जांच रे केड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य री जो आप बात कर रहे हैं वनडे अनुसार भुगतान भी किदो जावे है।
2: सही बात है। जटे आप ही प्रमुख एजेंसियां री बात कर रहे हैं तो अणवे देखो सा, भारतीय खाद्य निगम है, राज्य सरकारी खरीद एजेंसियां है और सरकारी सहमतियां जो समितियां वणी लगी है वी भी आवे। और जटे अभी लाभ री बात करी तो किसान रे वास्ते उचित मूल्य री गारंटी दे रियो है, आर्थिक सुरक्षा दे रियो है, कृषि में निवेश बढ़ावा री प्रेरणा दे रियो है और ऋण चुकावा री क्षमता में भी वृद्धि वेरी है।
3: अंडलारला ने जटे देश री बात करा तो देश री बात है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि वे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित वे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वन्ने भी यो मजबूती प्रदान करे है
2: और आते आते कृषि क्षेत्र में भी विकास हुए। और देखो सा, जटे बात करा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानारी आय बढ़ावा रे वास्ते एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करे है ताकि किसाना ने उत्पादन लागत अधिक लाभ मिल सके और अणु खेती ने लाभकारी बनावा में भी सहायता मिले। विशेष रूप जो छोटा और सीमांत किसान है वनारे वास्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भी बाजारी अनिश्चितता और सामना करवाने में अपेक्षाकृत आप ही कैसे का कमजोर व्यवसाय।
3: बिल्कुल सा। और जटे देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपके हो कि भारतीय कृषि व्यवस्था री एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। जो किसान ने वनारी फसला रो न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य प्रदान करने वनाने आर्थिक सुरक्षा भी देवे है।
2: सही बात है। और देखो सा, खरीफ फसला रे लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसाना ने उत्पादन बढ़ावा में, बेहतर तकनीक अपनावा में और कृषि में निवेश करवा रे लिए प्रोत्साहित करे सा। और देखो सा, अणा सब वाता में देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में और अधिक प्रभावी और पारदर्शी वनऊ कहिए कि अपना देश रो प्रत्येक किसान जो है अणी रो पूरो लाभ ले सके सा।
3: बिल्कुल सा। या तो कीजिए देखो पा किसान री बात और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और किसान भाई बहना ने को तो प्यारो से एक राजस्थानी लोकगीत सुनावा सा।
2: हाँ सा, हुना यो मनभावन राजस्थानी लोकगीत।

0: हाँ तो नानू भाई देखो सा आत्रो बढ़िया मनभावन राजस्थानी लोकगीत आपे अपने कार्यक्रम में माध्यम किसान भाई ने सुनाया सा।
1: बिल्कुल सा।
0: और देखो सा अभी टेम वीडियो है जानकारी, तो आज अपने कार्यक्रम में कनी विषय पे जानकारी कर रही है सा।
1: बिल्कुल सा। देखो आप जाना कि आज रो जमानो है देखो ऑनलाइन और डिजिटीकरण।
0: हाँ हाँ।
1: तो ऑनलाइन प्रक्रिया में जो सरकारी योजना है वनारो किसान भाई कई प्रकार लाभ ले सके अंडी जानकारी करावा सा।
0: हाँ हाँ देखो सा आज रो जो डिजिटल युग है वन में केंद्र और राज्य सरकार जो है नागरिक के वास्ते बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। अना योजना रो लाभ ले वारे लिए अबे अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है और ऑनलाइन प्रक्रिया रे माध्यम जो लोग घर बैठा आसानी अलग अलग सरकारी योजना रे लिए आवेदन कर सके। अंडे वास्ते समय श्रम और धन री बचत हुए और सरकारी कार्यालय में बार बार चक्कर लगावरी आवश्यकता भी नहीं पड़े सा।
1: बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ऑनलाइन योजना रो लाभ लेवा रे बात है सबसे पहला संबंधित जो योजना है अंडे आधिकारिक वेबसाइट या पचे पोर्टल पर जानो वे।
0: हाँ हाँ।
1: और योजना री पात्रता आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया ने ध्यान पूर्वक भरने यो सुनिश्चित करना पड़े कि आवेदक

0: योग्यता रे, योग्य है यानी,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: आप में वह योग्यता है तो आप वने फार्म ने भर सको।
1: सही बात है। और देखो सर, अंडे बात पोर्टल पर अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराणो वेवे। रजिस्ट्रेशन रे वास्ते सामान्यतः मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार संख्या जैसी जानकारी री आवश्यकता वे। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी रे माध्यम उ सत्यापन की दो जावे। सफल पंजीकरण रे बाद आवेदक री लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी प्राप्त वेवे सा।
0: बिल्कुल सा, और लॉगिन करवारे बाद आवेदन पत्र ने सावधानी पूर्वक भरनो चावे, और
1: हाँ
0: मैं नाम, पतो, जन्म तिथि, बैंक खाता विवरण, आय संबंधी जानकारी और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज किया जावे। और आवेदन पत्र भरता टाइम यो ध्यान रखना जावे कि जानकारी जो है वह सही वेणी चावे, क्योंकि गलत जानकारी मिलवा पर अपना आवेदन जो है वो निरस्त बही सके।
1: सही बात है। और देखो सर, अन्य बात नानू भाई की ये कि आवश्यक जो दस्तावेज अपलोड करना वे, अन्य में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट रो आकार रो फोटो जैसा दस्तावेज जारी आवश्यकता पड़े, और दस्तावेज जो है स्पष्ट और निर्धारित आकार में वेणा चावे सा।
0: और ये सब देखो जानकारी भरवारे केड़े दस्तावेज अपलोड कर दा,
1: हाँ
0: और वणु
1: हाँ
0: कहवे कि अपनो आवेदन फार्म जो है वो जमा हो जाए, और अंडी एक रसीद जो है वह अपने पास मिल जावे। तो वह रसीद अपने सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में कभी अगर मंडी जरूरत भी और आवेदन री स्थिति रो पतो करना पड़े तो आपा मंडने देख सका।
1: सही बात है। देखो सर, आवेदन जमा वेवारे बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज और जानकारी रो सत्यापन की दो जावे। सत्यापन सफल वेवा पर योजना रो लाभ सीधा लाभार्थी रे बैंक खाता में भेजो जावे या पचे दूसरों निर्धारित सुविधाएं प्रदान की दी जावे। और आप ही देखा कि अधिकांश योजना रो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जो डीबीटी प्रणाली रो उपयोग की दो जावे, जंडी सहायता राशि जो है सीधा बैंक खाता में इस पहुंचे सा।
0: बिल्कुल सर, और ऑफलाइन जो ऑनलाइन प्रक्रिया रे माध्यम यदि आप यो कार्य करा तो अंडा
1: हाँ
0: कई लाभ है, क्योंकि अण में देखो एक पारदर्शिता बढ़े,
1: हाँ
0: भ्रष्टाचार कम वे, और आवेदन री स्थिति आसानियों देखी जावे, और टेम री जो है वह खास बचत वे। और ग्रामीण क्षेत्र में ई मित्र केंद्र है या जन सेवा केंद्र है या डिजिटल सेवा जो केंद्र है वन पे जाने किसान भाई बहन जो है वे ऑनलाइन आवेदन कर सके।
1: सही बात है। और देखो सर, अबे तो आपने कुल मिलाइन किसान भाई ने यो इस कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रियाओं सरकारी योजना रो लाभ प्राप्त करना अत्यंत सरल, तेज और सुविधाजनक वणग्यो है। अगर ये नागरिक सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन करेगा तो भी विभिन्न जो भी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वनारो लाभ आसानी प्राप्त कर सके और अपने जीवन स्तर में भी सुधार लाई सके सा।
0: तो देखो या तो दीदी जानकारी के ऑनलाइन प्रक्रिया में योजना रो लाभ कने प्रकार ले सका,
1: हाँ हाँ
0: और देखो कार्यक्रम में को तो चलता चलता एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और हुनावसा।
1: हाँ सा हुनायो मन भावन राजस्थानी लोकगीत।

0: हाँ तो नानो भाई यो तो सुनो आप मन भवन राजस्थानी लोकगीत और देखो सा गड़ी राड़ी नारो तो अपने चालवारो टाइम वे गयो है आप ही अपने किसान भाई आगे ला सा
1: राम राम सा।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। दिन के 3 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की तीन पट्टिकाएं मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी

0: एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
0: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांबरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने आज कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे एक श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर है 8958-75335 और 8218-3-26-3-8-6। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, दिन के 3:05 हो चुके हैं, हमारी ये सभा में ही समाप्त होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम लेकर आपसे फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे है। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ हैं मनस्वी।
1: दोस्तों, आज का कार्यक्रम होगा जानकारी और प्रेरणा से भरपूर। न्यू गैजेट्स में जानेंगे स्मार्ट रेल कोच की खासियतें। सेहतनामा में बात करेंगे पोम्पे डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस की। फिल्मी दुनिया में चर्चा होगी राज खोसला और क्लाइंट इस्टवुड की। साथ ही वर्ल्ड नो टोबैको डे के महत्व को समझेंगे। अहिल्याबाई होलकर और कमला सोरैया के प्रेरणादायी जीवन के बारे में जानेंगे, तथा टेनिस स्टार ईगा स्वायंटेक से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी।
0: और हाँ, अंत में आज का इतिहास और स्पोर्ट्स अपडेट से जुड़ी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का युवाणी कार्यक्रम इस शानदार गीत के साथ।

0: दोस्तों जरा सोचिए, ट्रेन का सफर इतना स्मार्ट हो जाए कि सीट से लेकर सुरक्षा तक हर चीजें टेक्नोलॉजी संभाले,
1: जहां ऑटोमेटिक दरवाजे, डिजिटल डिस्प्ले पर हर स्टेशन की जानकारी, बेहतर सुरक्षा सिस्टम और पहले से ज्यादा आरामदायक सफर।

0: यानी यात्रा बने और भी आसान और मॉडर्न।
1: बिल्कुल, तो चलिए आज के न्यू गैजेट सेगमेंट में जानते हैं भारतीय रेलवे के ऐसे ही कुछ आधुनिक स्मार्ट रेल कोचेस के बारे में जो रेल यात्रा को भविष्य की ओर ले जा रहे हैं।
0: जी हाँ मोहित, भारतीय रेलवे अब तेजी से हाईटेक होती जा रही है और नए स्मार्ट रेल कोचेस यात्रियों को शानदार सुविधाएं देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं।
1: इन स्मार्ट कोचों में ऑटोमेटिक डोर्स लगाए जा रहे हैं जो ट्रेन चलने के दौरान खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए OBCMS सेंसर्स भी लगाए जा रहे हैं जिससे एक्सेल और बेरिंग की निगरानी जो है वो रखी जा सकती है।
0: इसके अलावा अब कई ट्रेनों में GPS बेस्ड पैसेंजर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी लगाया जा रहा है जिससे यात्रियों को अगला स्टेशन, ट्रेन की स्पीड और यात्रा से जुड़ी जानकारी रियल टाइम में मिलती रहती है।
1: बिल्कुल, और इन कोचेस में नाइट विजन IP बेस्ड CCTV कैमरास, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम और इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके।
0: इतना ही नहीं, कुछ आधुनिक कोचों में मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स, बेहतर एयर सस्पेंशन सिस्टम और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग जैसी सुविधाएं भी यात्रियों के अनुभव को बेहतर बना रही हैं और कोच के अंदरूनी भाग को भी काफ़ी आधुनिक और आरामदायक बनाया गया है जो तेजस राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में देखा जा सकता है।
1: दोस्तों, भारतीय रेलवे अब कवच जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीक पर भी काम कर रही है जो ट्रेनों की टक्कर रोकने में मदद करती है और रेलवे सुरक्षा को नई ऊंचाइयां देती है।
0: यानी आने वाले समय में रेल यात्रा सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक स्मार्ट और हाईटेक अनुभव बनने वाली है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास स्मार्ट रेल कोच गैजेट्स और तकनीकें जो भारतीय रेलवे को और भी आधुनिक बना रही हैं।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जब शरीर थकने लगे, जब सांसें कुछ कहने लगे, तब जरूरी है रुककर सुनना, क्योंकि स्वास्थ्य की कहानी अक्सर शरीर के संकेतों से ही शुरू होती है।
3: बिल्कुल मनस्वी, कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई ऐसी बीमारियां सामने आ रही है जिनके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी होती है।
2: इसलिए आज के सेहतनामा में हम बात करेंगे दो ऐसी रेयर डिजीजेस की, एक है पोम्पे डिजीज और दूसरी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो शरीर को अंदर ही अंदर प्रभावित करती है, लेकिन सही समय पर पहचान और इलाज से इन्हें काफ़ी हद तक संभाला जा सकता है।
3: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं पोम्पे डिजीज़ की। यह एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें शरीर एक जरूरी एंजाइम सही मात्रा में नहीं बना पाता। इसी वजह से मांसपेशियों में ग्लाइकोजन नामक पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है।
2: पोम्पे डिजीज़ से प्रभावित व्यक्ति को चलने फिरने, सीढ़ियाँ चढ़ने, सांस लेने में और कभी कभी दिल से जुड़ी परेशानियाँ भी हो सकती है। यह बीमारी बच्चों को और बड़ों दोनों में ही हो सकती है।
3: इसके लक्षणों में लगातार मांसपेशियों की कमजोरी, जल्दी थकना, सांस लेने में परेशानी और शरीर का कमजोर पड़ना शामिल हो सकता है। समय पर जांच और इलाज से मरीज की स्थिति को काफ़ी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है।
2: अब बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की। यह भी एक जेनेटिक डिजीज़ है जो मुख्य रूप से फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। इस बीमारी में शरीर में बनने वाले म्यूकस यानी बलगम बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है।
3: इस कारण मरीज को बार बार फेफड़ों में संक्रमण, लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत और भोजन को पचाने में काफ़ी परेशानी होती है, और कुछ बच्चों में वजन न बढ़ना और कमजोरी भी इसके संकेत हो सकते हैं।
2: डॉक्टरों के अनुसार ऐसी बीमारियों में शुरुआती पहचान बहुत ही ज़रूरी होती है। रेगुलर चेकअप, सही दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और संतुलित खान पान मरीज की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं।
3: इसके साथ ही समाज में जागरूकता फैलाना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि रेयर डिजीज़ से जूझ रहे लोगों को समय पर सही इलाज और सहयोग मिल सके।
2: तो दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी असामान्य परेशानी को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसी संदेश के साथ आज के सेहतनामा में बस इतना ही।

0: हर कहानी में जीवन का संगीत भर देते थे। उनकी फिल्मों में प्रेम था, रहस्य था, संवेदना थी और समाज की धड़कनों की गूंज भी। मानो हर फ्रेम एक शेर हो और हर दृश्य एक गजल। वे केवल निर्देशक नहीं थे, वे भावनाओं के शिल्पकार थे, जो पर्दों पर इंसानी रिश्तों के रंगों को बड़ी खूबसूरती से उकेरते थे।
1: बिल्कुल, फिल्मी दुनिया में कुछ नाम जो है वो ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ सितारे नहीं बल्कि एक दौर बन जाते हैं। और आज के फिल्मी दुनिया सेगमेंट में भी हम बात करेंगे दो ऐसे ही महान कलाकारों की जिन्होंने अपने अपने सिनेमा को नई पहचान दी।
0: बिल्कुल मोहित, एक हैं भारतीय सिनेमा के शानदार निर्देशक राज खोसला और दूसरे हैं हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता निर्देशक क्लिंट ईस्टवुड की। इन दोनों का आज जन्मदिन है और दोनों ने अपनी कला से दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों महान फिल्मी हस्तियों के जीवन और उनके यादगार सफ़र के बारे में।
1: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक राज खोसला की। 31 मई 1925 को पंजाब के राहो में जन्मे राज खोसला शुरुआत में शास्त्रीय संगीत सिखाते थे और कुछ समय तक आकाशवाणी में भी संगीत विभाग से जुड़े रहे। बाद में वे मुंबई आए और गुरु दत्त के सहायक के रूप में फिल्मी सफ़र की शुरुआत की।
0: राज खोसला को हिंदी सिनेमा में स्टाइलिश सस्पेंस फिल्मों का मास्टर माना जाता है। उन्होंने CID, वो कौन थी, मेरा साया, दो रास्ते, मेरा गांव, मेरा देश और दोस्ताना जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी फिल्मों में संगीत और गीतों की प्रस्तुति भी बेहद ही खास होती थी।
1: और उनकी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का सम्मान भी मिला। उनकी फिल्मों में रहस्य, भावनाएं और संगीत का ऐसा मिश्रण होता था जो दर्शकों को लंबे समय तक याद रहता था।
0: उन्हें वुमेन्स डायरेक्टर भी कहा जाता था क्योंकि वे अपनी फिल्मों में अभिनेत्रियों को बेहद ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते थे। साधना, वहीदा रहमान, आशा पारेख, नूतन और मुमताज़ जैसी अभिनेत्रियों के करियर में उनकी फिल्मों का बड़ा योगदान रहा है।
1: अब बात करते हैं हॉलीवुड के महान अभिनेता और निर्देशक क्लिंटन ईस्टवुड की। 31 मई 1990 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जन्मे क्लिंटन ने अपने करियर की शुरुआत छोटे टीवी रोल्स से की थी,
0: लेकिन उन्हें असली पहचान मिली वेस्टर्न फिल्मों और डर्टी हैरी जैसी फिल्मों से। वे सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि एक शानदार फिल्म निर्देशक और निर्माता भी हैं। उन्होंने अनफॉरगिवन, मिलियन डॉलर बेबी, अमेरिकन स्नाइपर, ग्रैंड टोरिनो और मिस्टिक रिवर जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया है।
1: दिलचस्प बात यह है कि क्लिंटन ने अभिनेता, निर्देशन और संगीतकार तीनों रूपों में अपनी प्रतिभा दिखाई। उनकी फिल्मों में मजबूत किरदार, गहरी भावनाएं और शानदार निर्देशन देखने को मिलता था।
0: उनकी फिल्म मिलियन डॉलर बेबी और अनफॉरगिवन को एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर जैसे बड़े सम्मान मिले हैं। क्लिंट ईस्टवुड को दुनिया के सबसे प्रभावशाली फिल्मकारों में गिना जाता है।
1: तो दोस्तों, राज खोसला और क्लिंटन दोनों ही ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी और अपने कला से करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। तो इसी के साथ आज की फिल्म दुनिया में इतना ही।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी चीज हो जो धीरे धीरे इंसान की सेहत, सपनों और आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाती रहे, तो उससे सावधान रहना कितना जरूरी होगा। और इन्हीं गंभीर मुद्दों पर हर साल 31 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोमाको डे, यानी विश्व तम्बाकू निषेध दिवस।
4: जी हाँ मोहित, आज सिर्फ सिगरेट या तंबाकू की बात नहीं हो रही है, बल्कि ई सिगरेट, वेपिंग डिवाइसेस और दूसरे निकोटिन प्रोडक्ट्स भी तेज़ी से युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। इन्हें स्टाइल और ट्रेंड के रूप में पेश किया जाता है, जबकि ये सेहत के लिए बेहद ही नुकसानदायक हैं।
3: बिल्कुल, और इसी दिन की शुरुआत जो है वो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 1987 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों के प्रति जागरूक करना और दुनिया को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है।
4: तंबाकू और निकोटिन उत्पाद कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। WHO के अनुसार हर साल लाखों लोगों की मौत इन उत्पादों के कारण होती है। सबसे चिंता की बात यह है कि बच्चे और किशोर भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं।
3: इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना, तंबाकू और निकोटिन कंपनियों की रणनीतियों को उजागर करना और लोगों को यह समझाना कि किसी भी तरह का निकोटिन प्रोडक्ट सुरक्षित नहीं होता।
4: और अब बात करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 की थीम की। तो इस साल की थीम है अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन, यानी आकर्षण की सच्चाई उजागर करना और निकोटिन व तंबाकू की लत का मुकाबला करना।
3: तो दोस्तों आइए इस दिन पर संकल्प लें कि खुद भी तंबाकू से दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके नुकसान के बारे में जागरूक करें,
4: क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी दौलत है और आज की सही आदत कल का सुरक्षित जीवन

0: इस दिन पर संकल्प लें कि खुद भी तंबाकू से दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके नुकसान के बारे में जागरूक करें।
1: क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी दौलत है और आज की सही आदत कल का सुरक्षित जीवन बनाती है।

0: प्रजा के सुख के लिए पल पल ढलती रही। विपत्तियों ने उन्हें परखा, दुखों ने उन्हें तराशा, पर अहिल्याबाई ने हर कठिनाई को अपने साहस का आभूषण बना लिया। वे सिंहासन पर बैठी रानी भर नहीं थी, वे करुणा, न्याय और सेवा की जीवित प्रतिमा थी, जिनके हृदय में प्रजा के लिए ममता और मन में धर्म के लिए समर्पण था। जब जीवन ने उन्हें अपनों का साथ छीन लिया, तब भी उन्होंने हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि अपने आंसुओं को शक्ति बनाकर इतिहास में अमर हो गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर से।
1: बिल्कुल, इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चांदी गांव में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत सरल और धार्मिक थी। मराठा साम्राज्य के सेनापति मल्हार राव होलकर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और अपने बेटे खंडेराव होलकर से उनका विवाह कराया।
0: पति खंडेराव होलकर और बाद में मल्हार राव होलकर के निधन के बाद अहिल्याबाई ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उस दौर में महिलाओं के लिए शासन चलाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने साहस और समझदारी से हर चुनौती का सामना किया।
1: उन्हें भारत के सबसे आदर्श शासकों में भी गिना जाता है। उन्होंने इंदौर और महेश्वर को शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का बड़ा केंद्र बनाया। उनके शासन में लोगों को न्याय, सुरक्षा और खुशहाली भी मिली।
0: उन्होंने देश भर में कई मंदिर, घाट, धर्मशालाएं और कुएं बनवाए। वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। सोमनाथ, द्वारका, उज्जैन, हरिद्वार और रामेश्वरम जैसे कई तीर्थ स्थलों के विकास में भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है।
1: इतना ही नहीं, अहिल्याबाई महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता की भी समर्थक थी। उन्होंने माहेश्वरी साड़ियों जैसे पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा दिया, जिससे महिलाओं को रोजगार और पहचान मिली। जनसेवा और न्याय के कारण उन्हें लोग प्यार से लोकमाता और देवी अहिल्या कर बुलाते थे।
0: साल 2025 में उनकी 300वीं जयंती पर पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई थी। उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए गए और इंदौर एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है।
1: बिल्कुल, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उनके शासन को आदर्श शासन बताया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो जनता की भलाई को सबसे ऊपर रखे।
0: शब्द जब संवेदनाओं की गहराइयों को छू लें और लेखनी समाज की रूढ़ियों को चुनौती देने लगे, तब एक असाधारण रचनाकार जन्म लेता है। ऐसी ही सशक्त लेखिका थी कमला सुरैया। अब बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका कमला सुरैया की। उन्होंने कमला दास और माधवी कुट्टी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है।
1: उनका जन्म 31 मई 1934 को केरल में हुआ था। वे अंग्रेजी और मलयालम दोनों ही भाषाओं की मशहूर लेखिका थी।
0: उन्होंने महिलाओं की भावनाओं, स्वतंत्रता और अकेलेपन और समाज की बंदिशों को अपनी कविताओं और कहानियों में बहुत ही खुलकर लिखा। उनकी आत्मकथा माई स्टोरी ने साहित्य जगत में नई चर्चा शुरू कर दी थी। उस दौर में जिस तरह उन्होंने महिलाओं की भावनाओं और समस्याओं को खुलकर लिखा, वो बहुत ही साहस की बात मानी जाती है।
1: उनकी रचनाओं में भारतीय समाज और मिट्टी की खुशबू जो है वो साफ दिखाई देती है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और एशियन पोएट्री प्राइज जैसे कई बड़े सम्मान भी मिले और आज उनके जो आधुनिक भारतीय जो अंग्रेजी कविता है वो सबसे मजबूत आवाज़ में गिनी जाती है।
0: तो दोस्तों, महारानी अहिल्याबाई होलकर और कमला सुरैया दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में समाज को नई दिशा दी। एक ने जनसेवा और न्याय से इतिहास बनाया तो दूसरी ने अपनी लेखनी से लोगों की सोच बदलने का काम किया। तो आइए आज उनके जन्मदिन पर उनके योगदान को याद करें और उनसे सीख लें कि सच्ची मेहनत और मजबूत इरादों से समाज में बदलाव लाया जा सकता है।

0: दोस्तों, भारत की धरती पर ऐसी कई महान महिलाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपने काम और सोच से समाज को नई दिशा दी, और आज इनके जन्मदिन के मौके पर हम बात करेंगे दो ऐसी ही प्रेरणादायक महिलाओं की।
1: एक है लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर और दूसरी है प्रसिद्ध लेखिका कमला सुरैया। इन दोनों का ही आज जन्मदिन है।
0: बिल्कुल, एक ने अपने न्याय और जनसेवा से लोगों का दिल जीता तो दूसरी ने अपने लेखनी से समाज की सोच को चुनौती दी।
1: जी हाँ मोहित, दोनों ने अपने अलग अलग रास्तों से समाज को नई प्रेरणा दी। नारी शक्ति की वह ज्योति थी जो आंधियों में भी जलती रही, संघर्षों की राह पर चलकर भी

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आज 31 मई है और आज के दिन दुनिया की एक शानदार टेनिस खिलाड़ी ईगा का जन्म हुआ था। ईगा पोलैंड की प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी है और महिला टेनिस में दुनिया की टॉप खिलाड़ियों में गिनी जाती है।
4: जी हाँ मोहित, ईगा ने बहुत ही कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर खिलाड़ी देखता है। उन्होंने फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन जैसे बड़े ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स भी जीते हैं। खास बात यह है कि वे पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।
3: बिल्कुल, ईगा का जन्म 31 मई 2001 को पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ था। उनके पिता खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं, इसलिए बचपन से ही इन्हें खेल का माहौल मिला। ईगा ने छोटी उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपनी मेहनत से दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी बनी।
4: साल 2022 में उन्होंने लगातार 37 मैचेस जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया, जिसे महिला टेनिस में 21वीं सदी की सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक माना जाता है। उनकी तेज शैली और दमदार फोरहैंड और शानदार फिटनेस की वजह से लोग उन्हें क्वीन ऑफ क्ले भी कहते हैं।
3: बिल्कुल, ईगा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि अपने शांत स्वभाव और समाज सेवा के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, बच्चों की मदद और यूक्रेन सहायता जैसे कई सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया है। दुनिया भर के युवा खिलाड़ी आज भी उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं।
4: तो दोस्तों, आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम ईगा को

0: दोस्तों अब समय है कार्यक्रम के खास हिस्से आज के इतिहास का, यानी 31 मई के दिन इतिहास में क्या क्या खास हुआ, आइए जानते हैं।
1: सबसे पहले बात करते हैं साल 1859 की, तो आज ही के दिन लंदन की मशहूर घड़ी बिग बैन पहली बार समय बताने के लिए शुरू हुई थी। आज यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रतीकों में गिनी जाती है।
0: बात करें साल 1970 की, तो

0: आज के दिन पेरू में आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा में हजारों लोगों की जान गई और यह 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है।
1: और विज्ञान की दुनिया में 31 मई का दिन खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन कई महत्वपूर्ण शोध और तकनीकी उपलब्धियों ने दुनिया को नई दिशा देने का काम किया।
0: तो दोस्तों, ये थी 31 मई से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं।

0: तो दोस्तों अब बात करें आज के स्पोर्ट्स अपडेट की, तो दुनिया की सबसे महंगी T20 लीग IPL का रोमांच अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का ग्रैंड फिनाले आज खेला जाएगा। 73 मैच और 63 दिनों के ये सफ़र के बाद आखिरकार पता चल ही गया है कि 19th सीजन की ट्रॉफी के लिए कौन सी दो टीमें भिड़ेंगी।
1: दोस्तों IPL 2026 का फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेज गुजरात टाइटंस के बीच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ इस सॉन्ग से लेते हैं आपसे विदा। आज मैं था आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित और मेरे साथ थी
0: मनस्वी।

कार्यक्रम युववाणी अभी आपने सुना, हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खूबसूरत सी संडे शाम में मैं हूं आपकी आरजे कीर्ति और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा फिल्म संगीत। उम्मीद है कि आपका रविवार हंसी खुशी और अपनों के साथ बेहतरीन गुजरा होगा। अब दिन ढल रहा है और शाम अपनी साथ लेकर आई है कुछ सुरीले नगमे और

किशोर कुमार का गाया ये खूबसूरत सा गीत ये श्याम मस्तानी, और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था आर डी बर्मन का, फिल्म थी कटी पतंग। तो दोस्तों आज की जो शाम है, संडे की शाम कुछ ऐसी ही होती है जैसे एक खूबसूरत किताब का आखिरी पन्ना। कल फिर नई शुरुआत होगी, लेकिन आज की शाम को संगीत के नाम करते हैं।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: दोस्तों कभी कभी कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाती बल्कि महसूस किए जाते हैं। ऐसे ही एक एहसास के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, वो आपको बहुत पसंद आएगा।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
5: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
8: RBI कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: सूरज ढल रहा है, आसमान रंग बदल रहा है और संगीत संगीत की इस शाम को और भी खास बना रहा है। तो आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत फिल्म मेरे जीवन साथी से किशोर कुमार की आवाज़ों में।

0: दोस्तों, रविवार की जो शाम है हमें ये सिखाती है कि थोड़ी ही देर रुककर खुद के साथ वक्त बिताना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ आज की इस सुहानी संडे शाम से मैं आरजे कीर्ति आपसे विदा लेती हूँ। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी के हर पल को संगीत के साथ जीते रहिए। मिलेंगे फिर एक नई शाम, नए गीतों और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर सुनेगा जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक।

समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुई और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों के प्रयासों को पहचानें और उनकी सराहना करें जो कुछ नया कर सबको प्रेरणा देते हैं। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़ने का आग्रह किया।
1: साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
0: मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने को कहा। स्वदेशी पेय पदार्थों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने इन्हें अपनाने की अपील की।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने हाल ही की अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार द्वारा चोल काल की प्राचीनतम पट्टिकाओं को भारत को सौंपने पर इसे गर्व का क्षण बताया। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं के उत्साह का जिक्र करते हुए देश के युवा साथियों से इस विधा में पारंगत होने की अपील की। गर्मियों की छुट्टियों में एस्ट्रोनॉमी से जुड़े विषय पर क्लब बनाकर नया सीखने का सुझाव दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते हुए देश के विभिन्न अंचलों में हो रहे नवाचारों, राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियों तथा गांव कस्बों की बातों के साथ गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रेरणादायी कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने रांची में संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रिकॉर्डधारी विजेताओं को बधाई देते हुए इसे देश के खेल भविष्य के लिए उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर राज्य भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर युवाओं के साथ कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ें तथा नवाचार अपनाकर अपने कौशल में बढ़ोतरी करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विचार युवाओं को सकारात्मक परिवर्तन और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।
2: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
0: खेती में उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को समय पर सलाह देने के लिए कल से देश भर में

0: कोविड बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से करेंगे। अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस पहल में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडको की भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। रिडको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश ओला ने बताया कि प्रस्तावित नीति में सामान्यतः भूखंडों का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाएगा। वहीं फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लग एंड प्ले, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए 33 से 66 वर्ष तक की लीज का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा नई नीति में फ्लैटेड फैक्ट्री, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित आवासीय तथा सामाजिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सुविधाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित नीति में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में रिडको द्वारा विकसित औद्योगिक टाउनशिप में अब भूखंड आवंटन, प्रबंधन तथा निस्तारण हो सकेगा। NICDC द्वारा जारी मॉडल फ्रेमवर्क पर आधारित ये नीति राजस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री टिफनी ट्रंप आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर की यात्रा पर रहीं। वे अपने पति माइकल बोलोस के साथ विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचीं। जैसलमेर पहुंचने पर उनका पारंपरिक लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। टिफनी ट्रंप की जैसलमेर यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ विशेष सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं। टिफनी के जैसलमेर आगमन से इस पर्यटन नगरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रसिद्ध होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला मुख्यालयों पर साइकिल रैली निकालकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया गया। जालौर में निकाली गई रैली में बड़ी संख्याओं में युवाओं ने हिस्सा लिया। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस मौके पर नाथो तालाब पर कार्यक्रम रख जल पूजन किया गया। सरहदी जिले जैसलमेर में अभियान के तहत भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शरबत और नींबू पानी पिलाया गया। बालोतरा के जसोल में प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता बढ़ाई गई। इसी तरह पाली के तखतगढ़ में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गंगा जल का पूजन कर आम जन को शपथ दिलाई। करौली के पांचना बांध पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने वृक्षारोपण और जल पूजन किया। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां मुख्यमंत्री कार्यालय से पहुंची टीम ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
1: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान, जल शपथ, वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, MPT रिचार्ज शाफ्ट तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।

0: जोधपुर की बड़ली ग्राम पंचायत में संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जिलाधिकारियों के साथ बड़ली भैरूजी तालाब पर श्रमदान कर आमजन से सहभागिता निभाने का आह्वान किया। प्रदेश के कई भागों में बीते दो दिनों से बना हुआ आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि कुछ जगहों पर आज भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में तेज हवाएं चलने और विभिन्न स्थानों पर बरसात के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर तथा डीडवाना, कुचामन के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, अजमेर और राजधानी जयपुर के लिए येलो अलर्ट बताया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के 19वें सीजन का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में दोनों टीमें चौथी बार एक दूसरे के सामने होंगी। पहले तीन मैचों में आरसीबी ने 2 में और गुजरात टाइटंस ने 1 में जीत हासिल की थी। दोनों ही टीमों ने लीग मुकाबलों में 9-9 जीत दर्ज की थी और समान अंक हासिल किए थे। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुईं। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। झालावाड़ जिले के 3 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डेस्क से सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार, डीएसपी प्रेम कुमार और डीएसपी हर्षराज खरेड़ा को ये सम्मान दिया गया है। इन्हें विभिन्न अभियानों, जांच और कानून व्यवस्था में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दूसरी बार डीजीपी डेस्क मिली है। इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में एसपी रहते हुए भी उन्हें ये सम्मान मिल चुका है। वहीं हर्षराज खरेड़ा को ऑपरेशन क्लीन राइड और प्रेम कुमार को ऑपरेशन शटर डाउन में प्रभावी रूप से काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर ने विभिन्न उपखंडों के राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि परिवादियों को त्वरित लाभ मिले। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिले में कोई भी पुराना राजस्व मामला अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण द्वारा एक ही दिन में 237 मामलों की सुनवाई कर 175 का निस्तारण किए जाने की भी सराहना की। झालावाड़ पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके तहत झालावाड़ में मामा भांजा चौराहे से गावड़ी तालाब और भवानी मंडी रोड तक के मार्ग को आदर्श ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस मार्ग पर यातायात नियमों की 100% पालना सुनिश्चित की जाएगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट का

ने ओपन वर्ग का खिताब जीता, वहीं बालिका वर्ग में टीना ब्याडवाल चैंपियन बनी। जिला शतरंज संघ के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि व्यांश ने सभी 6 मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। झालावाड़ में जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत विकास परिषद की पहल पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में महिलाओं को 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ है। 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान 29 जून तक चलेगा। इस दौरान 9 महीने से 5 साल तक के लगभग 1,48,000 से अधिक बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। विटामिन ए की खुराक से रतौंधी और अंधता जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इससे दस्त और निमोनिया के घातक प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। CMHO डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि ये खुराक आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों पर उपलब्ध करवाई गई है। झालावाड़ पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत ये गिरफ्तारी की गई। आरोपी साइबर अपराधों के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनके बैंक खातों पर साइबर धोखाधड़ी की 36

अलावार जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: माए काश्तकारा ने बखत माथे सलाह देने रे खातिर कालेसू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। 30 जून ताई चालन वाला ई अभियान रो शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला सु करेला। अभियान रे चालता पंचायत स्तर माथे सक्रिय भागीदारी और योजनावां रो लाभ सीधे गांवां ताई पहुंचायो जावणो पक्को करयो जावेला। कृषि मंत्री सगला राज्यां रा मुख्यमंत्रियां सु इन अभियान माए वारी भागीदारी री खातिर बात करी है। श्री सिंह केंद्रीय मंत्रियां और दूजा जनप्रतिनिधियां सु भी इन पहल माए भेड़ा होने री अरज करी है। वाने कृषि विज्ञान केंद्रां ICAR संस्थाना कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अहलकारा साथ वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी रे साथ इन अभियान ने आगे बढ़ावन री अरज करी है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडकोरी भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति ने सरकार मंजूरी दे दी है। रिडकोरा मुख्य कार्यकारी अहलकार सुरेश ओला बतायो कि प्रस्तावित नीति माए सामान्यतः भूखंडारो आवंटन 99 बरस री लीज माथे करो जावेला। वठीने फ्लैटेड फैक्ट्री प्लग एंड प्ले वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक जड़ा विशेष खेतरा रे खातिर 33-66 बरस ताई रो इन लीज रो प्रावधान राख्यो गयो है। जल शक्ति मंत्रालय काले नवी दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास माथे राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन करेला। इन रो लखस भारत रे जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ने मजबूत करनो है। मंत्रालय कहो है कि इन कार्यक्रम रो खास आकर्षण एक एड़ी पहल री शुरुआत करनो है जिन रो लखस जल संसाधन प्रबंधन पेयजल और जलवायु परिवर्तन सु निपटनो है। कार्यक्रम रे चालता जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रे बीचे जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन खातिर एक समझौता ज्ञापन माथे दस्तखत कराया जावन री आस है। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेला। ए समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। प्रदेश माए चलाया जा रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत आज भी कई गतिविधियां राखी जी। जिला मुख्यालय माथे साइकिल रैली निकाल रहे लोगों ने पानी बचावन रो संदेश दियो गयो। जालोर माए निकाली जी रैली माए बड़ी तादाद माए युवा मां हिस्सो लियो। चूरूरा पुलिस लाइन मैदान माए राखी जा श्रम दान कार्यक्रम माए लोगों बढ़ चढ़ भागीदारी निभाई। इन मौके माथे नाथो तालाब माथे कार्यक्रम राखर जल पूजन करो गयो। सरहदी जिला जैसलमेर माए अभियान रे तहत भीषण गर्मी ने बीचे राहगीरा ने शरबत और नींबू पानी पिलायो गयो। बालोतरा रा जसोल माए प्रभात फेरी निकालर जागरूकता बढ़ाई जी। इन तरह पाली रे तखतगढ़ माए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गंगा जल रो पूजन कर आमजन ने शपथ दिलाई। करोली रा पांचना बांध माथे राखी जा कार्यक्रम माए जनप्रतिनिधिया रे साथ आमजन ने पौधारोपण और जल पूजन करो। शिरोई सु माणा खबर नवीस बतायो कि वठे मुख्यमंत्री कार्यालय सु पहुंची टीम अभियान री प्रगति री समीक्षा करी।
1: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान जल शपथ वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग MPT रिचार्ज साफ्ट तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल आकाशवाणी समाचार सिरोही।
0: जोधपुर री बड़ली ग्राम पंचायत में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जिला अहलकारा रे साथ है बड़ली भैरूजी तालाब माथे श्रमदान कर आमजन सु सहभागिता निभाने रो हेलो करो। अभियान रे तहत काले जिला माए कृषि संगोष्ठी वेला और नवाचार प्रदर्शनी लगाई जावेली। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनायो जा रियो है। ओ दिन तंबाकू रे उपयोग ने समाप्त करने रे लखस सु विश्व स्वास्थ्य संगठन कानिसु शुरू करी जी महती वैश्विक पहल रो हिस्सो है। इन वर्ष रो विषय अपील का अनावरण निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना राख्यो गयो है। इन मौके माते प्रदेश भर माए भी न्यारा न्यारा जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। और अब मौसम प्रदेश रा कई हिस्सा माए लाडला दो दिना सु बनेड़ो आंधी बारिश रो दौर धीमो पड़ गयो। हालांकि कुछ एक जगह माथे आज भी धूल भरी आंधी रे साथ है बिरखारी गतिविधियां दर्ज करी जी। मौसम महकमो पश्चिमी जिला माए तेज हवावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां माथे बरसात रे साथ है ओला पड़ने री चेतावनी जारी करी है। महकमा बीकानेर फलोदी जोधपुर नागौर और डीडवाना कुचामन रे खातिर आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट वठीने जैसलमेर श्रीगंगानगर चूरू अजमेर और राजधानी जयपुर रे खातिर येलो अलर्ट बतायो है। मौसम केंद्र जयपुर पश्चिमी विक्षोभ रे असर सु आज बीकानेर जयपुर अजमेर भरतपुर कोटा जोधपुर और उदयपुर संभाग रा कुछ एक थोड़ा माए तेज बादल गरजने रे साथ है धूल भरी आंधी चालने री आस जताई है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट रा 19वां सीजन रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स

0: બેંગલુરુ આર ગુજરાત ટાઇટન્સ રે બીચે ખેલ્યો જાવેલા અમદાવાદ રે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ માથે સિંજા 7:30 વજ્યા સુ શરૂ વેલા ઇન સીઝન માં દોનું ટીમા ચોથી બાર એક દૂજે રે સામે વેલા પહેલે 3 મેચા માં આરસીબી 2 માં આર ગુજરાત ટાઇટન્સ 1 માં જીત હાસિલ કરી હી દોનું હી ટીમા लीग मुकाबले में नौ नौ जीत दर्ज करी ही और बरोबर अंक हासिल करया हा। ध्यान जोग है कि राजस्थान रॉयल्स सीजन में चोखो प्रदर्शन करता हुआ प्ले ऑफ ताइरो सफर तय करो हो इन खिताबी मुकाबले ने लेर क्रिकेट प्रेमिया में रोमांच बनोड़ो है और आखिर में खास खास खबर एक कर फेरू सुनो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों सू चोखे काम सू जुड़ने और कुछ नयो सीखने रो हेलो करियो आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करया उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने सलाह देवन खातिर काले सू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी और आईपीएल क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स रे बीच वेली खिताबी भिड़ंत इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो वियो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए अब कितनी बातें भूल गया हूँ तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है
2: कहाँ से पता चलेगा
1: उद्गम से आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ
3: आज ही सर्च करूंगा
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: दादी कौन सा प्लांट है
7: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
8: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
6: दादी रुको लिंक में क्लिक मत करना
8: क्यों
6: ये एसएमएस स्कैम है

0: राम राम भावना भैसा, राम राम।
1: राम राम नानू भाई, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला अगले किसान भाई बहना ने आपनो
1: राम राम सा। देखो कार्यक्रम नो टेम भी नानू भाई और आप ही हंगला जना रेडिया रे अड़े बड़े आइन बैठ गया।
0: बिल्कुल सा। और देखो यदि कार्यक्रम में आया तो कार्यक्रम में देखो बात बात रे जानकारी किसान भाई बहना वाते लावा हा।
1: और देखो सा मौसम भी सुहावनो वही रियो है बाने। देखो थोड़ा सा बादला छाया है, ठंडो ठंडो वायरो वाजी रियो है। तो ठंडा ठंडा वायरा में दो चार भावन राजस्थानी लोकगीत भी अपने किसान भाई ने सुनावांगा तो भाई शाम रो आनंद दुगनो वे जाएगा।
0: बिल्कुल सा। और देखो काले तो आंधी तूफान भी आया और अनी टाइम पे देखो खेती बाड़ी में देखो आप फसला वही रखी है, देखो सब्जियां ले रहा हाँ जटे देखो बटे देखो गौरी कटाई वही गई नरी जगह जुताई वगैरह चल रही, लेकिन फिर भी अनी टाइम पे जो कद्दू वर्गीय फसल है और सब्जियां है तो कद्दू वर्गीय सब्जियां में किसान भाई कई प्रकार प्रबंधन कार्य कर सके वंडी जानकारी करावा सा।
1: सही बात है। और देखो सर जटे चौपाली बात कर रहे हाँ तो आज कद्दू वर्गीय सब्जियां में प्रबंधन कार्य के बारे में किसान भाई ने जानकारी दा कि कद्दू वर्गीय परिवार में देखो यूं तो सब्जियां रे लारे लारे कई सारा फल भी है जिस तरह की तरबूज है, खरबूजो है, कद्दू है, तोरई है, ककड़ी है और ये सब खेती बाड़ी की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जटे बात करें ये पौधा न केवल अपने आहार प्रदान रे वास्ते आवश्यक है बल्कि आप ही कह सका कि अलग अलग तरह का स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर रहा है। लेकिन अना में कई बार अना पौधा में कई प्रकार रोग और कीटा रो प्रकोप भी जावे और जनयू कहिए कि जन में एक प्रमुख समस्या आप ही देखा कि सूत्र क्रमिया रो आक्रमण है। तो क्यों नहीं आज थोड़ो बहुत जानकारी किसान भाई ने अन्य संबंधित भी दानी सा।
0: बिल्कुल सा। सूत्र क्रमियारी जटे आप बात कर रहे हो तो देखो सूत्र क्रमिय रोग जो करे तो हमारे प्रबंधन रे जटे बात करा तो सबसे पहला किसान भाई देखो फसल चक्र अपना भाई।
1: हाँ हाँ।
0: सूत्र क्रमियारी कई प्रजातियां जिस तरह की ग्लोबर्डेर, मेलाइकॉन, हेडरोटस ये सब मिट्टी में लंबा टाइम तक सक्रिय नहीं रहे अंडे वाते फसल चक्र अपने ही ने अनारी रोकथाम की दी जा सके और जना खेत में जड़ गांठ रोग रो प्रकोप वही रो वे वटे ऐसी सब्जियां या अन्य फसलों रो चुनाव किसान भाई कर सके जणू यो रोग नहीं लागे।

0: जितर के राजमो है, मटर है, मक्का है, गवार है, पालक है, सलाद है, अनारो उपयोग करने फसल चक्र ने अपनावे।
1: सही बात है। देखो सा हाथे हाथे नानू भाई स्वच्छ कृषि औजारा रो प्रयोग भी कर सका। एक खेत ने दूसरे खेतों कृषि औजारा रो प्रयोग पहली हाउ तरीकों उन्होंने साफ कर लेनो चावे। और अगर कहीं एक खेत में सूत्र क्रमियारी उपस्थिति है तो भी दूसरा खेता में कृषि औजारा रे माध्यम चला नहीं जाना चाहे। आते आते एक चीज़ और बताऊँ कि रोग रहित पौधा रो चुनाव करना है। स्वस्थ साफ और रोग रहित पौधा रो चुनाव अपने किसान भाई ने करनो चाहे। और बात करें जैसे कार्बनिक खाद रे प्रयोग री, तो देखो सर कार्बनिक खाद जो है सूत्र क्रमिया रे प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करवा वाली कुछ ऐसा कवक और बैक्टीरिया ने बढ़ावो देवे, जड़ियोंना रो संक्रमण कम हो जावे। खादारी जो भूमि री जुताई करता समय या बीज बोवा में या पौध लगाऊँ 20-25 दिन पहली डालनो चावे सा। और मैं जैसे मुख्य रूप बात करा नीम, सरसों, महुआ, अरंडी, मूंगफली री खली आपने 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टर जरूर डालनी चावे।
0: और जटे शत्रु फसला और रक्षक फसला री अगर आप बात करा तो कुछ फसला जिस तरह शतावर, क्रिस्टेरिया, क्रोटोलेरिया आदि जो है जड़ गांठ सूत्रकृमी री संख्या ने कम करे और सफ़ेद सरसों आलू में शिष्ट सूत्रकृमी ने रोके, ये फसला शत्रु फसला कहलावे। अंडे अलावा कुछ फसला जिस तरह की जड़ा में ऐसा रासायनिक द्रव्य निकाले जो सूत्र क्रमियारे बातें विश्व काम करे, जिस तरह की गेंदा है, सेवंती है, तो अणा अंतरवस्त्रीय फसलारे रूप में अगर फसलारे बच्चे आपा लगावा तो अणु कही वे कि आपने जो सूत्र क्रमी है वंडी रोकथाम वही सके है।
1: सही बात है। देखो सा नानू भाई हाथे बात कर रोग ग्रस्त पौधा ने नष्ट करवाई, तो अगर आरंभ में सूत्र क्रमी रो प्रकोप बहुत कम है तो रोग ग्रस्त पौधा ने उखाड़े नष्ट कर देना चाहे। कहिए कि रोग रो प्रकोप भी कम हो जावे। आते आते बात करें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई री, तो देखो सा मई जून रो महीनो चाल रो है अबार और खेतारी मिट्टी परट ना हालू 15-30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें छोड़ देनो है। और यूँ कहिए कि सूत्र क्रमियारा अंडा और डिम्बक ऊपरी सतह पर आई जाएगा और जो कि सूरज के ताप और चिड़िया आदि वहाँ पे कह सके कि नष्ट हो जावे, जनु सूत्र क्रमी रे प्रकोप ने काफ़ी हद तक कम किदो जाई सके सा।
0: और जटा देखो मृदा सौर निर्जमयीकरण रे अगर आप बात करना तो ये एक आसान और सुरक्षित प्रभावशाली विधि है। अंडे द्वारा सूत्र क्रमीरे लारे लारे विभिन्न कीट रोग जनक और खरपतवारी रोकथाम भी अणी टाइम पे आपा कर सका। अणी विधि में गर्मी में मिट्टी में सिंचाई करने 15-30 सेंटीमीटर गहराई तक गहरी जुताई करने 4-5 सप्ताह तक पॉलीथीन शीट ढक दा, जनु की मिट्टी में उच्च तापक्रम द्वारा जो सूत्र क्रमी है वी भी नष्ट हो जावे।
1: सही बात है। और हाथे हाथे बात करा खरपतवार नियंत्रण री, तो देखो सा खेता में उगवा वाला कई प्रकार खरपतवार पर सूत्र क्रमी पना लेन पोषण प्राप्त करे, अपनो जीवन चक्र पूरो करे और आवा वाली फसल पर आक्रमण करें हानि पहुंचावे। तो अंडे वास्ते कहिए कि टेम टेम पे समय समय पर खरपतवार रो नियंत्रण करनो भी जरूरी है सा।
0: और जटे देखो सब्जियां में आपा बात कर रहे हैं तो फल मक्खी और सफेद मक्खी रे देखो टेम पे निगरानी करतो रहनो। वणा ने मिथाइल गुगोनोल पाश या पचे चिपचिपी पाश रो प्रयोग करने आपा हटे सका। और फल मक्खी जो है वणु ग्रसित फलाने इकट्ठा करने अगर गड्ढा में दबाई दा तो वणु भी कई वेगा की सूत्र क्रमी नष्ट हो जाएगा।
1: सही बात है। तो देखो सा ई अगर छोटी छोटी बात आपने किसान भाई ध्यान रखेगा तो निश्चित रूप आप ही कह सका कि कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं वन में प्रबंधन कार्य करें टेम टेम पे हाउ चेत रहें हाउ आमदनी और मुनाफो ले सकेगा।
0: और जटे आमदनी और मुनाफा की बात कर रहा हो तो
1: सही
0: आप
1: तो बात
0: समझ रहे हो कि राजस्थानी गीत होनावा सा।
1: हाँ, तो सुना नहीं आपने कार्यक्रम में माध्यम एक मनभावन राजस्थानी लोकगीत।
0: हाँ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ तो नानू भाई यो तो सुनियो संदेश और लारे लारे मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनियो सा।
3: बिल्कुल सा।
2: और देखो सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और अभी आप ही किसान मैंने जानकारी दा कि देखो सा आवा वाला समय में कड़ी हिसाबो खेती बाड़ी री तैयारी रखनी है ताकि ज्यादा ज्यादा भी लाभ ले सके सा।
3: बिल्कुल सा।
2: और देखो सा जब बात करा सामान्य जानकारी री तो मिट्टी री नमी बनाए रखवा रे लिए पंक्तियां रे बीज सूखी घास या फसल रे अवशेष रो उपयोग करना चाहे और हाथे हाथे बात करा गर्म हवाओं रे बचाव रे लिए खेता री सीमाओं पर आप ही कह सका विंड ब्रेक स्ट्रिप्स या जूट री जाली लगानी चाहे।
3: बिल्कुल सा। और जड़े देखो आप बात करा तो अबार जो खेत है देखो खाली है।
2: हाँ।
3: और खेत में देखो किसान भाई जो है गौरी फसल ले ली थी और वना ने देखो सुरक्षित भंडारण री बात करा।
2: हाँ। हाँ।
3: क्योंकि आप जान रहे कि देखो आंधी तूफान आईरा वर्का छाटा वे तो अनु पहला देखो अनाज रो भंडारण जो आपने करना वन में भंडार कर रही अच्छी तरह साफ सफाई कर देनी है।
2: हाँ हाँ।
3: अनाज ने अच्छी तरह ने सुखाई ने कूड़ा कचरा ने अलग कर देना और दाना में यदि नमी री मात्रा कम रहे तो वना रो भंडारण करनो चावे और भंडारण री छत और दीवार में फर्श पर जो है एक भाग मेलाथियन 85 से 100 भाग पानी में मिलाई ने छिड़काव करना और पुरानी बोरिया रोग किसान भाई प्रयोग करे तो वन में एक भाग मेलाथियन और 100 भाग पानी रे गोल में 10 मिनट तक वना ने भिगोई ने बचे छाया में हुकाईने वंड बाद अगर वन में भी अनाज रो भंडारण करेगा तो वे कीट अपने अनाज ने बचाई सके।
2: देखो सहाते बात करा मूंग रे फसल री तो सिंचाई री जटे बात करा तो अणी समय मूंग री फसल फूल आवा या फली वनवारी अवस्था में है तो अणी अवस्था में नमी री कमियों पैदावार घट सके अंडे वास्ते हल्की सिंचाई जारी रखनी है और गर्म मौसम में थ्रिप्स और प्रकोप बढ़ सके अंडे वास्ते नियमित रूपो अपने किसान भाई ने हावचेत रहना और निगरानी करता रहनो है सा।
3: और जटे देखो कपास रे बात करा तो अणी सप्ताह में किसान भाई जो है कपास रे वावणी रवाते खेत ने तैयार कर सके।
2: हाँ।
3: और अच्छी गुणवत्ता वाला जो प्रमाणित बीज है वे देखो विश्वसनीय स्रोत या सरकारी संस्थाओं खरीदने अगर वंडी वावणी करेगा तो वना ने कपास रे अच्छी फसल मिल सकेगा।
2: सही बात है। और हाथे हाथे बात करा बेल वाली सब्जियां री कुष्मान कुली सब्जियां में लाल भ्रंग कीट अंकुरित और नई पत्तियां ने खाइन फसल ने हानि पहुंचावे और अंडी रोकथाम रे वास्ते कार्बेरिल 5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टर दर सुबह या शाम रे समय भुरकाव करनो है।
3: और जटे जायद मूंगफली अगर आप बात करा तो खरपतवार रे प्रकोप ने नियंत्रित करने और उचित पैगिंग वाला इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है वन्ने लारे जो गुड़ाई री आवश्यकता लागे तो वन्ने पूरी करनी है।
2: और देखो सर जटे बात करा नानू भाई भिंडी रे फसल री तो तेज हवा चालवारी संभावना ने देखता तका किसान भाई ने सलाह दी दी जावे की भिंडी और दूसरी सब्जियां दी तुड़ाई करवारी हावचेत रहनो है ताकि संभावित नुकसान बचो जाई सके सा।
3: और जड़े देखो तापमान री बात करा तो देखो आपने तापमान जो है घटत बढ़त चाल रही है और देखो तापमान में धीरे धीरे वृद्धि विरोध जो आंधी तूफान आवे या तापमान में उतार चढ़ाव दिखे तो अने टाइम पे अपने ढांडा चोपा जो है और अपने सेहत रो भी विशेष ध्यान रखनो है।
2: सही बात है। और जटे ग्रीष्मकालीन हरा चारा री बात करा तो देखो सर गर्मिया रे महीना में हरा चारा री काफी कमी आनो एक आम बात है अंडे वास्ते हरा चारा वाली फसला जिस तरह की ज्वार बाजरा मक्का और लोबिया दी बुवाई करनी चाहे ताकि आपने हरा चारा दी उपलब्धि भी अणी गर्मी रे मौसम में वणी रेवे सा।
3: और देखो पशु रे बात है देखो आपने सुबह दन और हांजरी वेरा देखो साफ पीवा रे पानी री व्यवस्था करनी।
2: हाँ।
3: पशुशाला री नियमित रूप साफ सफाई रखनी और यदि आंधी तूफान अंधड़ री संभावना वे।
2: हाँ।
3: तो वना ने सुरक्षित स्थान पे बांधनो और आपने भी सावधानी रो विशेष ध्यान रखनो चाहिए।
2: सही बात है। और देखो सा आप ही सजग और सतर्क रहंगा तो वणी हिसाब आप ही खेती बाड़ी में और पशुपालन में सजगता हूँ काम करांगा और निश्चित रूप ज्यादा ज्यादा लाभ और आमदनी ले सकांगा। और देखो सा नानू भाई वातारे सिलसिला ने दा अटे विराम और क्यों नहीं आपको तो आपने कार्यक्रम में माध्यम एक और मन भवन राजस्थानी लोकगीत सुनावा नहीं सा।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हाँ तो नानो भाई, यू तो सुनियो संदेश और लारे लारे मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनियो सा। और देखो सा, अभी टाइम वेरियो है योजना रो, तो आज आप ही अपने कार्यक्रम में कड़ी योजना री जानकारी कर रही है सा।
8: देखो आज आपा किसान भाई बहना वाते लाए हैं कृत्रिम गर्भाधान योजना कई है, अंडे बारे में देखो जानकारी करावा सा।
7: हाँ सा, देखो सा, भारत सरकार और अलग अलग जो राज्य सरकार है वनडे द्वारा पशुपालन ने बढ़ावा देवा और किसानारी आय बढ़ावा रे लिए कृत्रिम गर्भाधान योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर अन्य मुख्य रूपों आप कह सका राष्ट्रीय गोकुल मिशन रे तहत इन्हें संचालित की दो जा रही है।
8: बिल्कुल सा, और अणि योजना रे देखो मुख्य उद्देश्य रही, अगर आप बात करा तो देखो सबसे पहला बात करा कि नस्ल सुधार।
7: हाँ।
8: तो देशी गाय और भैंसा री नस्ल में सुधार करना और दूध उत्पादन में वृद्धि रे बात है। देखो जो है 80 बछड़िया ने जन्म देनो जो अधिक दूध दे सके।
7: सही बात है। देखो सा, हते पशु पालकारी आय भी बढ़ानो है, कम लागत में बेहतरीन पशु तैयार करें किसाना रो आप कह सका की मुनाफो बढ़ानो है। और हाथे हाथे बात करा रोग नियंत्रण री, तो प्राकृतिक गर्भाधान फैलवा वाला संक्रामक बीमारियां ने भी रोकनो है सा।
8: बिल्कुल सा, और जटे देखो अणि योजना री प्रमुख विशेषता और अगर लाभ री बात करा तो निशुल्क या बेहद सस्ती सेवा है, क्योंकि अणि योजना रे तहत ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं कृत्रिम गर्भाधान या तो बिल्कुल मुफ्त कियो जाएगा या पचे नाम मात्र जो सेवा शुल्क है वन में अन्य कियो जावे है। और जटे सेक्स सॉर्टेड सिमनरी अगर बात करा तो मन में कई बात है।
7: देखो सा, अन में कही है कि ये सरकार अणि तकनीक ने बढ़ावा दे रही है, जन पे आप कह सका 90% तक बछड़ी फीमेल बछड़ो पैदा व्यवहारी संभावना है। और अणु कही है कि किसान भाई रे अनावश्यक बछड़ा रे पालन पोषण रो खर्चो उठानो नहीं पड़े। और देखो सा, जटे घर पर सेवा री बात करा तो योजना रे तहत कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता जैसे मैत्री कार्यकर्ता सीधा किसान ने घर जैन पशु रो गर्भाधान करे। हाते आते मुफ्त टैगिंग और पंजीकरण की बात करा तो योजना रे अंतर्गत आवा वाला पशु रे इनाफ पोर्टल पर पंजीकृत किदो जावे और उन्हारे कान में एक यूनिक टैग लगायो जावे सा।
8: बिल्कुल सही। और देखो जटे अणि योजना की बात करें तो उनमें पात्रता रे बात है। देखो देश रा सभी छोटा सीमांत और प्रगतिशील जो पशुपालक है वे अणि किसान योजना रा पात्र, और यह योजना मुख्य रूप गाय और भैंस रखवा वाला पशुपालक रे बात है। और प्राथमिकता देखा तो यह वणी जगह है जटे डेयरी विकास अगर कम व्यो है तो वणी क्षेत्र में अणि योजना रो अधिक लाभ उठाई सके।
7: सही बात है। देखो सा, आवेदन और लाभ उठावा की प्रक्रिया कही है अन्य बारे में भी बतावा।

0: कि कृत्रिम गर्भाधान योजना रो लाभ उठानो बहुत ही आसान है। अंडे वास्ते जो है आवश्यक दस्तावेज की बात करा तो आम तौर पे अंडे लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक या पशु रो टैग नंबर अगर पहलू लागू लगो हुए तो वंडी आवश्यकता वेवेसा। और पशु चिकित्सक या AI जो आप ही कह सका वंडी तकनीकों पशु रो विवरण आप ही अनमें ले सका सा।
1: और देखो अंडे वाते जो किसान भाई है अपने राज्य रो जो पशुपालन विभाग है या पचे जो अंडे आधिकारिक वेबसाइट है या पचे जो नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय केंद्र है वटे जैन देखो अणि योजना रे बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सके। और अपने पशु ने कृत्रिम गर्भाधान योजना रे तहत जो है अत्यधिक देखो पशुपालन रे बढ़ावो दई ने दूध उत्पादन में वृद्धि कर सके।
0: सही बात है। देखो सा नानो भाई जटे आप ही कहा कि भाई खेती बाड़ी भी आमंद वही रही है, पशुपालन करें भी आप ही दुग्ध उत्पादन ने बढ़ा वो दे रहे हैं, तो निश्चित रूप आवा वाला टाइम में आप ही कह सका कि अपना किसान भाई भी समृद्ध और आप ही कह सका संपन्न वेगा। और अगर भी समृद्ध और संपन्न वेगा तो निश्चित रूप हमारे घर परिवार में भी आंगन में भी खुशहाली रहो, हमेशा यूं कहा कि मौसम बनियो रहेगा। और देखो सा अन्य तरीकों से अगर कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा तो आपको तो एक और बढ़िया सो मन भावन राजस्थानी लोकगीत अपने किसान भाई ने सुनावा नहीं।
1: बिल्कुल सा होना सा यो प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत।

0: बहुरी करेगा कब, तो मतलब जो आप ही काले हो चो काम की काले करेंगे मैंने आज करनो ना अबे आज करवा वाला मैंने अबारिश करनो। देखो सर समय तो परिवर्तनशील है, कंटेम समय बदल जा परिस्थितियां बदल सा और भी काम पर अटक्या रही जावे। तो वही हंसते ही तो आज आप ही आपने किसान भाई ने जानकारी दे दिया हाँ कि खेती बाड़ी में समय प्रबंधन रो कई महत्व है ना सर।
1: बिल्कुल सा। किसान भाई देखो खेती बाड़ी करे लारे लारे पशुपालन भी करे,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: खेती बाड़ी में देखो समय प्रबंधन भी जटे बात करा तो वन में जो आप बात की बात सही बात है कि सही काम सही समय पर मेनो
0: हाँ
1: चावे
0: हाँ
1: और सबू कम मेहनत में अगर वो सही काम वेगा तो वनु खेती और पशुपालन रे लारे जो समय प्रबंधन अगर अपनायो तो सीधा मुनाफा री प्राप्ति आपने वेगा सा।
0: देखो सार में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो किसान भाई ने ध्यान रखनी है कि देखो सा सबों पहली ध्यान रखना कि खेती में जो काम जड़ी समय पर किदो चाहनो चावे वो वणी टाइम पे करनो है। जिस तरह की फसल कटाई की बात कर रहे हाँ खेता में जुताई की का बात कर रहे हाँ तो जन टाइम जो काम करनो है वो तुरंत प्रभाव वो अपने वणी काम में लाग जानो है, पचे काले न परसू रो इंतजार नहीं करनो है नी सा।
1: बिल्कुल सा। और जटे देखो आप क्योंकि खेती में जिस तरह अबार गहरी जुताई कर
0: हाँ
1: सका तो
0: हाँ
1: अगर अबार वो काम सही समय पर कर लेंगे तो लाभ वेगा और जो काम आप कर सको वो आप करो और जो घर का अन्य सदस्य है
0: हाँ
1: वी
0: हाँ
1: आपकी सहायता करे। जिस तरह खेती बाड़ी में आप लागे लगाओ तो बीजोपचार करना है खाद लानो है थोड़ो कोई अट्टी बट्टी रो काम करना तो वो जो आपका साथी व्यक्ति वो वही काम ने निपटे
0: सही
1: सके।
0: बात है। वो देखो सर जो काम थोड़ा आप ही कह सके कि बाद में किधर जा सके, जिस तरह की खेतरी बाढ़ बंदी है या कांटा लगाना है या आप ही यूं कह सके कि मतलब बाढ़ ने रोकनो है, ये सब चीज़ा ने आप ही टेम रहता पचे जन टेम थोड़ी सा फुर्सत रहा पल मिले वन टाइम ये काम कर सका। पर पहली तो हावचेत रहन जो खेतियों संबंधित काम है वड़ा ने अपने निपटाना है ऐसा।
1: और एनी टाइम पे देखो आप देखा कि खेती बाड़ी में देखो आपने जो है कि बार देखो गहरी जुताई करनी
0: हाँ
1: उर्वरक
0: हाँ
1: लानो है अगली तैयारी करनी लेकिन बार बार देखो आप बाजार जावा या कई काम नहीं है और गर्मी में दोपहर अरे बेरा अगर खेती बाड़ी जेरा तो जी अनावश्यक कार्य फिजूल कार्य बनाने रोकने खेती बाड़ी पे देखो अपने अबार पहली ध्यान देना है
0: सही
1: सा।
0: बात है। देखो सर एक चीज़ और कहना चाहो नानू भाई कि किसान भाई ने चाहे कि अब देखो सर गर्मी रो टाइम चल रहे हो तो या तो वेगा जल्दी उठ जावे या शाम रे समय जन टाइम टेम थोड़ो ठंडो भी जावे वन टाइम सिंचाई है पशुआरो चारो पानी है या बचे भारी काम जो कि तावड़ा री लाई में नहीं बह सके मुड़ा काम ने आप ही कह सका सुबह शाम ठंडा पोर में निपट ही सका सा।
1: और सवेरे 10-11 बजे टाइम पर देखो आप मंडी जा सको
0: हाँ
1: बीज
0: हाँ
1: खरीद सको बैंक या सरकारी कामकाज है वे दोपहरों पहला पहला आपने निपटे लेना क्योंकि गर्मी बढ़वारे रहा जो है मांदगी देखो आपने नहीं आनी चाहिए।
0: सही बात है। देखो सा दोपहर रो समय जटे सरकार भी बार बार कह रही है रेडिया में भी अनाउंसमेंट वही रो है टीवी में भी बताई रहे हाँ कि भाई गर्मी रो प्रकोप चाल रो है तो दोपहर रो समय 12-4 रो जो टाइम वे वनने समय आपने घर में रहनो है आराम करनो है छाया में बैठनो है परिवार है बड़ा बुजुर्ग रे घर ला रे टाइम व्यतीत करनो टाबरा रे साथ वाताचीता करनी है और आपने घर गृहस्थी संबंधित खेती बाड़ी संबंधित पशुपालन संबंधित कई सारी योजनाएं आप ही घरे बैठा परिवार जन रे एक मत राय लेन वाली योजना पर आप ही पूरा अमल कर सका सा। और देखो सर जो भी छोटा मोटा काम घर गृहस्थी संबंधित है वी भी घर में बैठे ना आप ही आसानियों निपट ही सका सा।
1: और जटे हांजरी बेलाई जाओ तो चारों हाथ बाजार बच्चे जिस तरह हल्को काम है सब्जियां में निराई गुड़ाई करनी है
0: हाँ
1: पशुशाला
0: हाँ
1: री साफ सफाई करनी है पानी रो ध्यान रखना है सिंचाई री देख रेख करनी ये आप हांजरी ठंडी बेरा कर सको हो।
0: सही बात है। देखो सर पशुपालन में देखो सर सही टाइम पे दूध दोहन चारा पानी की व्यवस्था करना भी जरूरी है। देखो सर टाइम टाइम पे अगर आप ही बनाने संतुलित आहार दांगा टाइम टाइम पे पीवार और स्वच्छ पानी दांगा तो निश्चित रूप आप ही कह सका कि दूध उत्पादन में भी वृद्धि वेगा। और देखो सर रोजाना खेत पर जावारे बजाय देखो अगर सुबह शाम अगर आप ही जावांगा और चारों काटन घर में ले आवांगा तो भी अपने हरों चारों आसानी अपने पशुआरे वास्ते उपलब्ध वे सकेगा। और देखो सा बूंद बूंद सिंचाई है फवारा सिंचाई विधि है आना छोटी छोटी जो आप ही कह सका वैज्ञानिक जो विधियां हैं अनारो प्रयोग भी आप ही खेती बाड़ी रे काम ने आसानी करवा रे लिए अमल में लाई सका सा।
1: और जटे तकनीक री बात कर रहे हैं, डिजिटल कलन री बात कर रहे हैं, तो वन में देखो मोबाइल रे माध्यम घर बैठा जो कृषि विज्ञानियों आप सलाह ले सको, पशुवारी जानकारी ले सको, मंडी भाव पतो कर सको, और सही समय पे अगर आप आनी तरीका अगर सही काम करोगा तो आपने आमद जो है वन में वृद्धि भेगा, और समय प्रबंधन अगर आप अपनाओगा तो आप जीवन खुशहाल वही सके।
0: सही बात।

0: तो देखो भावना भाई साहब, ये तो प्यारो सो राजस्थानी लोक भजन होने सा।
1: हाँ
0: और देखो जीवन में अगर आप कहाँ तो समय रो विशेष महत्व है।
1: सही बात है
0: सही
1: सा।
0: समय पे सही कार्य वे जिस तरह के अणमे भी क्योंकि देखो भगवान रो भजन भी है वो भी समय प्रबंधन में आवे
1: हाँ
0: है।
1: हाँ
0: अंडे लारे भणाई लिखाई भी आपने जो रोजाना रा कार्यकलाप है वन में भी देखो जो समय प्रबंधन है
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: बहुत महत्वपूर्ण है।
1: सही बात है। और रानी वास्ते तो नानू भाई एक कहनावत की है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो भावना भाई सही तो उन्होंने प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत।
3: हाँ सा।
2: और देखो अबे आज रे दिन रे बात करा, आज है 31 मई।
3: हाँ हाँ।
2: और आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
3: हाँ हाँ।
2: हर वर्ष 31 मई ने यो देखो विश्व तंबाकू निषेध दिवस तंबाकू वेवा वाला जो खतरा है वनडे प्रति लोगों ने जागरूक करवारो संदेश दे और वर्ष 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आरंभ की दो गयो यो जो अभियान है अंडो मुख्य उद्देश्य है कि उस खामोश महामारी ने दुनिया ध्यान आकर्षित करनो जो प्रतिदिन हजारों जिंदगियां जो है वन्ने निकल रहे है।
3: सही बात है। देखो सर जेटे तम्बाकू री बात करें हाँ तो आज के टाइम में सबो बड़ो स्वास्थ्य संकट जो है वने रूप में यो उभर रो है। बीड़ी सिगरेट गुटको खैनी और हुक्को जो है शरीर ने धीरे धीरे नुकसान पहुंचे रो है। और आप कह सका कि देखो सा अणु हृदय रोग स्ट्रोक और कई प्रकार का कैंसर बहुत बड़ो कारण यो बन रो है। और खास कर जो युवा पीढ़ी है वह तेजी वनो शिकार बन रही है सा।
2: बिल्कुल सही है। विश्व स्तर पर हर वर्ष लगभग 80 लाख लोग जो है वे अकाल मृत्यु का शिकार जो है तम्बाकू सेवन रे कारण वे। और भारत में जटे बात करा तो लगभग 13 लाख लोग जो है देखो मृत्यु तंबाकू और धूम्रपान के कारण वे वैसा।
3: सही बात है। देखो सा पूरा शरीर तक पहुंचते ही यो जहर बन जावे। यदि आप ही कहा कि कोई भी व्यक्ति अना उत्पादा रो सेवन करे तो निकोटीन टार और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा हानिकारक रसायन शरीर में प्रवेश कर जावे। ये रसायन फेफड़ा रे जरिए कुछ ही सेकंड में रक्त में घुल जावे और रक्त अना ने शरीर दूसरा अंगा तक पहुंचावे। निकोटीन अपने मस्तिष्क ने प्रभावित करें लत पैदा करें और जिन टाइम आप देखा टार जो है फेफड़ा में जमा वे इन वड़ा ने नुकसान पहुंचावे। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त रे ऑक्सीजन ले जावरी क्षमता ने कम कर देवे।
2: बिल्कुल सही कह रहा हो। जटा आप तंबाकू री बात कर रहे हो तो अणु देखो कैंसर है हृदय रोग है फेफड़ा री बीमारियां है और खास तौर देखा तो गर्भवती महिला और बच्चा पर भी अंडो बहुत दुष्प्रभाव पड़े है।
3: सही बात है। देखो सा जागरूकता ही सबो बड़ो हथियार है। तंबाकू रोकवा लिए सरकार और समाज दो ही ने एक साथ मिलन काम करनो वेगा। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंधन रो कड़ाई पालन करनो जरूरी है। हाथे हाथे बात करा कि देखो सा स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता अभियान बढ़ावा री भी जरूरत है सा।
2: बिल्कुल सा। और देखो आज समय री मांग रे ला रे चाला तो आपन सब ने मिलने तंबाकू जो है यो एक जानलेवा आकर्षण है।
3: हाँ
2: अन्य पूरी तरह समाप्त करवा रहे वाते देखो प्रयास करनो पड़ेगा। तंबाकू छोड़नो निश्चित रूप में देखो चुनौतीपूर्ण वे किंतु दृढ़ इच्छा शक्ति रे ला रहे आप कह रहा हो कि अगर आप परिवार रा रहे रहा तो परिवार रो सहयोग और आत्मनियंत्रण द्वारा तंबाकू छोड़वा में यो मददगार साबित हो सके है।
3: सही बात है। देखो सा हर दिन यो संकल्प लेना जरूरी है कि आज जो दिन तंबाकू रहित और उत्पादारी बिक्री पर सख्त निगरानी और नियमों रो भी पालन वेणो जरूरी है। और देखो सा जटे तंबाकू छोड़वा रा कई कई फायदा है अन्य बारे में भी आपकी जानकारी ना सा।
2: बिल्कुल।

0: सही कह रहा हूँ कि देखो अगर आप तंबाकू छोड़ांगा तो देखो आपने कहिए कि 20 मिनट में रक्तचाप और हृदय गति देखो सामान्य वेवा लागे, एक बार मैंने हृदय रोक रोग खतरों भी काफ़ी कम हो जाए, और 5-10 वर्ष में कैंसर जैसा जोखिम है भी देखो धीरे धीरे घटवा लागे
1: सही
0: है।
1: बात है। और दांत मसूड़ा और त्वचा पहलू ज्यादा स्वस्थ वेवा लगेगा, मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर में भी सुधार आएगा, और आते आते देखा कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर वेवा लगेगा, और मूरी बदबू और दांतारो पीलोपन भी धीरे धीरे कम वेवा लगेगा।
0: तो आपने चाहे कि नियमित व्यायाम करना चाहे,
1: हाँ
0: प्रकृति
1: हाँ
0: के साथ रहने साइकिलिंग करनो, योग और संगीत ने अपनानो, ये सभी अच्छी आदतें देखो आनी लत ने हरावा में एक अत्यंत सहायक सिद्ध वही सके
1: तो
0: है।
1: देखो सा निश्चित रूप आप ही अपने किसान भाइयों और आप ही केवा के सभी युवा पीढ़ियों यो आह्वान करा कि भाई देखो सा आणि जो तंबाकू रस सेवन है विने आपने छोड़नो है, और किस तरह आपने सेहत भरी जिंदगी ने अपनानो है।
0: बिल्कुल सा, या तो किधी देखो आज रे दिन री बात विश्व तंबाकू निषेध दिवस रे, और कार्यक्रम में को तो एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और होना सा।
1: हाँ सर।

0: हाँ तो नानु भाई, यो तो सुनियो मन भावन राजस्थानी लोकगीत सा।
1: बिल्कुल सा।
0: और देखो सा, छुट्टियां रे टेम चल रियो है और उनमें अपने स्वास्थ्य प्रति भी पूरो सजग रहनो है। और देखो सा, अणी मौसम में शीतल ताजा और आसानी पचवा वाला भोजन री सलाह आप ही के साथ मैंने दा। बच्चा रे आहार में मौसमी फल, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, नारियल पानी, छाछ, बेल रो शरबत, नींबू पानी और आम पन्नो शामिल की दो जय सके सा।
1: बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये खाद्य पदार्थ जो है देखो शरीर में ठंडक देवा रहे, लार ला रहे, पानी और जरूरी पोषक तत्वारी पूर्ति करे और दही तलिया बोलिया अत्यधिक मसालेदार और भारी भोजन जो है सीमित मात्रा में लेना चाहिए।
0: सही बात है। और साथ साथ सौंफ रो पानी, पतली छाछ और बेल रो शरबत शरीर ने ठंडक पहुंचावा में सहायक मान्यो जावे। और देखो सा, ई अगर छोटी छोटी बातें रो आप ही ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप वाणी गर्मी रे टाइम में, ग्रीष्म ऋतु में भी आप ही पूरे समय तरोताजा मुनिया रहेंगा सा।
1: और देखो घड़ी रियाड़ी देखा तो वाता चीता तो करवारी नरी है, लेकिन घड़ी रियाड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवारो अपनो टेम वेरो, तो पाछा मिलवारे वादारे साथ आज्ञा दोसा। जय जवान
0: जय किसान।

कार्यक्रम खेती और घर अभी आपने सुना। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी उदयपुर केंद्र के साथ। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। और कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना है फिल्म देश परदेश से, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म खेल खेल में, और इस गीत को अपनी मधुर सी आवाजें दी है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। संगीत आरडी बर्मन का है।

आप आए बहार आई इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनवाते हैं अगला गीत, फिल्म आपकी कसम से, और इस गीत को गाया है किशोर और लता मंगेशकर ने।

शोर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, मन्ना डे महेंद्र कपूर की आवाजें थी। आइए अब सुनवाते हैं अगला गीत, चमत्कार फिल्म से कुमार सानू की आवाजें हैं।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार संध्या और 9 बजे सुनेगा News@9। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के

0: साजी वला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल

0: की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीत कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना

0: आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा केलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच

0: CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of Class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
0: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinderveer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged consumption of traditional summer beverages. Referring to mangoes, a favorite summer fruit, Prime Minister Narendra Modi praised the efforts of farmers, saying Indian mangoes are now reaching global markets from villages across the country. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

पंकज उदास की गाई ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम था सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं धड़कन फिल्म से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं।

उदित नारायण और कविता कृष्णामूर्ति की आवाज़ों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म देवदास थी। आइए सुनवाते हैं अगला गीत। फिल्म है आपका सुरूर और गीत को गाया है हिमेश रेशमिया ने।

अरिजीत सिंह की आवाजों को भी आप सुन रहे थे। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म कृष्णा कॉटेज से। इस गीत को अपनी मधुर सी आवाजें दी है श्रेया घोषाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं रविवारीय संगीत सभा, प्रसारण कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।

0: भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया इज ए रिनाउंड सैक्सोफोन आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट Sri Asanapurupu Yerraya and Party is accompanied on special Dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.N. Balachandar is a renowned Dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchare T.Z. Muthukumara Swami Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
0: Sri Yerraya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain. Ninnu Kori

0: नन्नूरा से ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है
1: श्री एर्रय्या बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्ने कोरी युन्नानुरा ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री अस्नापुरम यरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by श्री अस्नापुर पुयर्रया in the रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रया next presents सामगान प्रियकरम, a composition of गुरु सूरजानंद in राग कीरवाणी set to मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.
2: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: जुबैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिक

0: नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards